0: चार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
1: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केशगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारे संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले

0: उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिसे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी संवाद रिलेकर प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली रु श्रोता माने कार्यक्रम सुनुछन्ते आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रु ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ, କେବଳ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ନେଇ ଭଜି ହୁଏ, ଭାବ ଦେଇ ଡାକି ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ସବୁତକ ଭକ୍ତି ଆଉ ଭାବ ଦେଇ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭକ୍ତି ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦନା। ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କୃତ ବନ୍ଦନା, ପୁରାତନ ରଚନାରୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସରୋଦା ସୁତବର୍ଣ୍ଣେ।

ने स्नान, पूजा, भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देख आने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्री राम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष वाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे।

0: परियोजनानां भागाः सन्ति। एतासां परियोजनानां व्ययः 70,400,000-5,000 कोटि रूप्यकाधिकः अस्ति। अवसरेस्मिन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् 75 पुनर्विकसित रेलस्थानकानाम् उद्घाटनं भारतीय रेल विभागस्य विगतेषु कतिपय वर्षेषु अभवत्, तीव्र परिवर्तनस्य द्योतकं च अस्ति।
1: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: पूर्वाह्ने एव प्रधानमन्त्री हरियाणा राज्यस्य जिन्द रेलस्थानकात् भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन इत्यनेन चालित रेलयानाय अपि हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। एतत् रेलयानं जिन्द सोनीपत रेलस्थानकयोः मध्ये सञ्चरिष्यति, अथ 91 किलोमीटर मिता दूरता प्रायः द्विहोरायां पूर्णं करिष्यति। वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः एस्टोनिया देशस्य राजधान्यां ताल्लिन् नगरे तत्रत्य विदेशमन्त्रिणा मार्गुत् साह्यकना इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां भारत एस्टोनिया देशयोः मध्ये व्यापार, निवेश, अंकिकीय परिवर्तन, साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी चेत्येषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य सुदृढीकरण विषये विचार विमर्शः कृतः। अनन्तरं साक्यकना इत्यस्य उपस्थितौ मन्त्रिणा भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चम् अपि अभिसम्बोधितम्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः गतरात्रौ पश्चिमबंगाल राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां सिलिगुडी इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। सिलिगुडी नगरस्य बागडोगरा विमानस्थानके आगमनावधौ पश्चिमबंगालस्य मुख्यमन्त्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा तस्य स्वागतं विहितम्। श्रीशाहः अद्य जुमागाच नगरस्य सीमाचौकी इत्यत्र VSF इत्यस्य 18वां बटालियन इत्यस्य भ्रमणं करिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडिका तथा द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः अद्य प्रातः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः महिला एकलस्य उपांत्य चक्रीय स्पर्धायां चीन देशस्य चेन युफेई सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
2: संस्कृतर संवाद रिले करि प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्लीरु। श्रोतामाने कार्यक्रम शुणुछन्ति आकाशवाणी जयपुर केन्द्ररु। आज प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रम सम्पर्करे सूचना शुणन्तु। आमर स्वास्थ्य प्रचारित हेब सकाळ 7:10 रिले करि प्रचार करिब आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। वर्णपिफा वर्णाली क्रमरे आजर कार्यक्रम सम्भावना शुणिबे सकाळ 7:25 विषय रहिछि रंग संचे बीर खाए। श्रीक्षेत्र माथुरी कार्यक्रम रिले करि प्रचार करिब आकाशवाणी कटक केन्द्ररु सकाळ 8:30 आज विषय रहिछि खुंटिया मेकअप सेवा आलोचक पूर्णचंद्र खुंटिया। लघु संगीतर कार्यक्रम शुणिबे सकाळ 8:45 गीतिधारा कार्यक्रम शुणिबे सकाळ 9:00 सप्तधारा कार्यक्रम ओडिया कथाचित्र गीत शुणिबे सकाळ 9:30 हिंदी कथाचित्र गीत शुणिबे पूर्वाह्न 10:05 मध्याह्न 12:00 दिन 2:15 और संध्या 6:10 दिन 11:00 प्रचारित हेब नाटक मरुभूमिर प्रहरी प्रयोजना गौरचंद्र त्रिपाठी। कंधभाषार कार्यक्रम पुनेलेंजु शुणिबे दिन 12:30 भक्ति गीत शुणिबे दिन 12:50 शिल्पीमाने हेले अलेख चंद्र सामल, बंदिता दास, जीवनानंद पाणी एवं स्वरूपा चक्रवर्ती। गीति भारती कार्यक्रम शुणिबे दिन 1:05 किशोर भारती कार्यक्रम प्रचारित हेब दिन 1:20 शुणिबे नाटक बुढ़ा संखारी। युवश्रोता कार्यक्रम युववाणी रही आज अपराह 5:00 शुणिबे साक्षात्कार आज युवपीढ़ी

0: किसी फिल्म की नहीं कहानी, ये कैसा ये कैसा आया जमाना, ये कैसा
1: उसके बेटे को,
0: ये कैसा आया जमाना, ये कैसा।
2: माध्य अधिकारी ब्रह्मपुर हाथीबंध साहिब कहुचि, रंक संचय रंक अर्थ ये कृपण बा कंजूस समुदाय कहुचि, किंबा अदूरदर्शी मध्य हेइ पारे। काहेकि ना जो माने कष्ट करिकिरी केवल निज धन संचय करते एवं निज को कष्ट देकिरी से संचय को उपभोग करती ना, से माने होचंत अदूरदर्शी। आमर संचय दरकार, विपद आपद आसब किंबा दस्त खराब हब, से आम जी दरकार से संचय करवा, ता नुहे आम निजे जो कष्ट पड़ी धनटा उपार्जन करे निजे उपभोग न करी संचय कर रखा, आमर परवर्ती पायद माने से माने उपभोग करिवे, सेटा ठीक कथा नुहे। एटा होचे अदूरदर्शी, जो माने कि बुझिपारंतिनी किमिति अर्थ को उपयोग करा जाय पारिबो, सेही दृष्टि रु देखिबा। वीर एठे धनुर्धर वीर नु, वीर होचे जे कि उपभोग करिया जाने एवं चालाक चतुर। कृपण लोक मैंने कौन करती केवल कष्ट करिया जानचंती, उपभोग जानिना, केवल संचय करिया जानचंती। सेथिपई ए प्रबादटा कौन होची, मानवर स्वभाव को समालोचना कर, केवल कष्ट करिकरी धन संचय करिबाटा बोकानी, आम संचय को निंदा करिवानी, संचय

0: महरग काले अमली करिचु पूरा चौसठी मसला गुंडी आलो हुंडी।
1: मनीष जीवन रे धनर आवश्यकता समस्तंकर रहिछि। आमे समस्ते भी एकथा को मानुछे, भविष्यतरे कामरे आसियो बोली धन संचय करिबा बुद्धिमानर काम।
2: हाँ, केतेबेले को काम पई अर्थर आवश्यकता पड़िबो ताहा आमे कहि परिबानी, तेणु अर्थ संचय करिबा। किंतु संचय जेतेबेले कंजूसीर रूप निए सेतेबेले ताहा मनीष पई अभिशाप होइ जाए। किछि लोक थांती सेमानंकर एकमात्र लक्ष्य होची अधिकरु अधिक धन संचय करिबा, तेणिकि जहार जहा हो स्त्रीर देह खराब हो पिलामानंकर पाठपढ़ारे भी अबहला होना काहेकि सेमाने एसबु करिबाकु जमा भी पछंतिनी, केवल अर्थकु संचय करि चालंती।
1: ना ना, एमिति जमा भी करिबा उचित नुह सुरभि। घर पई परिवार पई पैसा आमे रोजगार करूछे, तेणु खर्च मध्य सेमानक पई ही करिबा उचित।
3: ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଛି, ଆମେ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉ, ବା ହଉଛି ସମସ୍ତେ ବି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ସଞ୍ଚୟ କରିବାଟା କିଛି ଖରାପ କଥା ନାହିଁ,

0: उड़ाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है।
1: अच्छा कहो तुम कुछ भी लेकिन ये समझदारों का कहना है। कहो तुम कुछ भी लेकिन ये समझदारों का कहना है।
2: क्या
1: लुटा देती है घर को मर्द औरत घर बनाती है। लुटा देती है घर को मर्द औरत घर बनाती है।
3: आम समाज रे एमती अनेक उदाहरण देखिबा को आमे पाउछे जे केतेक लोक जीवन सारा धन संचय करिथांती। समय रो नियम अनुसारे मृत्यु परे सेही धन को उत्तराधिकारी बा अन्य केही भोग करूछि।
4: जे कष्ट करी अर्थ रोजगार करिथाय से धन संचय करे, किंतु से तार धनर सुख को उपभोग करि पारे नाही। अथच अन्य जने बरदान परे प्राप्त करे सेही धनरे निज जीवन को भोग विलासरे जीवन जापन करे। एही कारणर कहाजाए रंक संचे बीर खाए।
5: डॉक्टर सूचना पढ़ी शिक्षाविद ब्रह्मपुर रहे। प्रथम आम देखा रंकीर अर्थ कौन। रंकी अर्थात जो मैंने लोभ बेसि जो मान टे खर्च जो मैंने पचघुंटा दिखते से लोक मैंने जिते पैसा संचय कर रखती न खाई न पी कष्ट कर पैसार सदुपयोग से पारती अंज लोक ताइए से कहुए रंकी संचय बीर खाए। जो मैंने खाई दिखती मानी से खाते न थी खर्च करते आने न खाई न पी पैसा संचय कर रखी था। रंकी संचय बीर खाए बोली कहुए संचय करवा के खराब कथा नहीं। आमर विपद आपदे पैसा सामर क्या मागवा कि निजे संचय कर रखा भल कि से संचय जदि लोभजनित हुए तार फल के भल हुए ना। जी पैसा अच्छी से भर चलने चेष्टा करूँ। अजथार लोभ परवश हो बहुत परिश्रम करा गुड़ाक खर्च न करजित धन को केवल संचय विनियोग करूँ ना जहाफल कि केतबले परिश्रम मूल्य आप अनुभव करें कहुए आम धन संचय करवा कि जब निजर दरकार खर्च कले ठीक अच्छे किंतु आम संचय करवा अथच अन्न मैंने तार बर्बाद करेंगे से क्षेत्र में आम केवल दुख भोग सार हम तेणु धन संचय करवा ठीक अच्छे कि लोभ परवश होवा उचित नुह। बर पीढ़ीर पा मैंने कौन हे से आम जाने से सत् मार्ग जीवे कि असत मार्ग जीवे आम जाने आमर गोटे प्रवचन अच्छी पुओ जदि योग्य है धन कहीं संचु पुओ जदि अजोग्य है धन कहीं संचु पुओ जदि योग्य है तेज़े सी तार रोजगार करके आराम रही पार आओ जदि अजोग्य है बापा पैसा दरकार नहीं पुओ जदि अजोग्य है जिते पैसा आप संचय कर सब जगह से बर्बाद करके उड़ेब तेणु पर पीढ़ी संचय अर्थात पर पीढ़ीर यही कि प्रकार पर पीढ़ी आमर ताकू धरिकमको व्यवस्था करवाक पड़ो।

0: ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଲାଇଭ୍ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେଡିଓ କେ ପାଚାରୁ। ଏଥିରେ ବିଷୟ ରହିଛି ଜଳବାୟୁ ବଦଳିବା ଭିତରେ ଆମର କାଇତାସ କଲେ ହେଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜୁଲାଇ ମାସ 19 ତାରିଖ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30 ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 0685423069। ବିଷୟଟି ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଜଳବାୟୁ ବଦଳିବା ଭିତରେ ଆମେ କାଇତାସ କଲେ ହେସି। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର 0685423069 0685423069। ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୂଚନା। ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି?
2: ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଣିକି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ।
1: ରେଡିଓରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ।
2: ସୁଲଭ ଦରରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ବିଜ୍ଞାପନ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସବୁଠି ସବୁ ସମୟରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ।
1: ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 8280306927 କିମ୍ବା 9449408097 ନମ୍ବରରେ।
2: ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର ସଦା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ, ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ।
0: ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଏଠି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ, ଆଜି ରାତି 10 ଶୁଣିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ବାଲିରଥେ ବିଜେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ରଚନା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୂଳିଆ, ପ୍ରଯୋଜନା ସୁମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଶୁଣିପାରିବେ ଆଜି ରାତି 10। ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 8:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ, ପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
3: କ୍ୟାଚ୍ ଦ ରେନ୍, ବାରିଶ କେ ପାନି କି ଏକ ଏକ ବୁନ୍ଦ କୋ ହମେ ବଚାନା ହେ, ତୋ ମେରା ଖାସ ଆଗ୍ରହ ହେ ବର୍ଷା କା ବୁନ୍ଦ ବୁନ୍ଦ ପାନି ହମ ମିଲକର କେ ବଚାଏ।
4: ଚଲ ହେ ତୋ ହମ ହେ, ଆଇଏ ଘରୋଁ ଅଫିସୋଁ ମେ ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ତକନିକ ଅପନାଏ, ରିଚାର୍ଜ ପିଟ୍ ଔର ଶାଫ୍ଟ ବନୱାଏ, ଅନୁପଯୋଗୀ ବୋରୱେଲୋଁ କୋ ଠିକ୍ କରେ, ଜଳାଶୟୋଁ ସେ ଗାଦ ନିକାଲେ, ଅଧିକ ସେ ଅଧିକ ପେଡ଼ ଲଗାଏ। ଇସ ବାରିଶ ଆଇଏ ଜୁଡେ କ୍ୟାଚ୍ ଦ ରେନ୍ ଅଭିଯାନ ସେ।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरूआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी, और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन

0: डिब्बों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने

0: कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भवः का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हाटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय

0: में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की

0: से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा हैं।
1: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
2: Working to strengthen each other's
3: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
0: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचावास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
4: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था तो मैं वापस गया अपने कमरे में। जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पे बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
6: हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
7: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है न धुआं न प्रदूषण।

0: क्षेत्र में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देशभर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9-kilometre-long Package 6 of the four-lane Greenfield Delhi-Amritsar-Katra Expressway. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
3: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनारोग्य योजना माध्यम रे प्राय 60 कोटी लोक 5 लाख टंका पर्यंत मागणा उपचार पई होईछंती योग्य हिताधिकारी ए पर्यंत 12 कोटी रो ऊर्ध मागणा चिकित्सा करा जाई छे जेउथरे गरीब परिवारक चिकित्सा खर्च प्राय 2 लाख कोटी टंका संचय होई परिछि आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करी आयुष्मान कार्ड बनंतु अधिक सूचना पई 14555 नंबर को कॉल करंतु
1: कार्यक्रमर परवर्ती गीतटी सुनिबा आओ प्यार करे चलचित्ररो कंठशिल्पी कुमार सानू श्यामराज गीत संगीत निर्देशक आदेश श्रीवास्तव

0: ଆକାଶେ କିରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତଟି ସହିତ ଶେଷ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସପ୍ତଧାରା। ଶ୍ରୋତାମାନେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ ଆଜି ରାତି 7ଟାରେ ଏବଂ ରାତି 8ଟାରେ। ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है। इसे हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। ये रॉकेट मिशन आगमन के तहत सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। विक्रम 1 का यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में ही डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह 4 चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों, खासकर युवाओं से इस ऐतिहासिक मिशन को देखने और टीम स्काई रूट की सफलता की कामना करने की अपील की है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडार्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चौथे नंबर की चार चेन यू की खिलाफ पहला गेम 21-19 से जीता। वहीं दूसरे गेम में वो 15-10 से आगे थी, तभी चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इसके बाद सिंधु को विजेता घोषित किया गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की

फीडबैक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। वहीं बिहार, कर्नाटक, केरला, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बारिश की संभावना है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म और उमस भरा मौसम बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपणको जणाउछि असुमारी शुभेच्छा। एही शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मा मानंक हात तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्री प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्री रो अपूर्व संभार। पवित्र घोष यात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार रे विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाती। आसंतु आपणको अपेक्षा रे सुभद्रा शक्ति बजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर।

जब तक हे जान। ए चलचित्र रे गीत सुनथले शिल्पी थिले श्रेया घोषाल एवं मोहित चौहान। गुलजार के गीत को संगीत रे सजेथले ए आर रहमान। हिंदी कथाचित्र रे गीत सुनछंती आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रु। कार्यक्रम रे परवर्ती गीत भारत चलचित्र रु। कंठशिल्पी नाकास अजीज एवं श्रेया घोषाल। इरशाद कामिल का गीत, संगीत निर्देशक सोहिल सेन।

चक दे इंडिया। ए चलचित्र पई कंठदान करथिले कृष्णा बेउरा एवं सलीम मिर्चांडा। जयदीप का गीत को संगीत रे सजाइथिले सलीम सुलेमान। धड़क चलचित्र रे गीत सुनिबा कंठशिल्पी अजय एवं श्रेया घोषाल। अमिताभ भट्टाचार्य गीत संगीत निर्देशक अजय अतुल।

0: ଶୁଣିଲେ ଭକ୍ତିଗୀତ ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସମୟ ଦିନ ଗୋଟେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ କନକଲତା। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एक सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम एक का यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम एक मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं।

0: नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और यह तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली आकाशवाणी जयपुर केन्द्र कार्यक्रम कार्यक्रम आम केन्द्र प्रसारित हो मीडियम वेभ्रे 204.5 मीटर तथा 1467 किलोहर्ट्ज जगे और एफएम जगे कार्यक्रम शुणिपार 103.6 मेगाहर्ट्ज जगे आपण मोबाइल फोन न्यूज अन् एआईआर आप जगे आम आकाशवाणी जयपुर केन्द्र समस्त कार्यक्रम शुणिपार प्रचार करुछु क्रांतीय लोकगीतर कार्यक्रम गीति भारती आज एथिरे प्रथमे शुणन्तु डोगरी लोकगीत परिवेषण करछन्ति शिल्पी प्रद्युम्न सिंह एवं कृष्णा कुमारी शुणिपारिबे किछि विज्ञापन विरति परे।
3: अच्छा दास बाबू आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
4: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेहिथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
5: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नहे बरं पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: अच्छा दास बाबू आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
4: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेहिथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
5: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नहे बरं पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: अच्छा दास बाबू आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: जय ईद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज जो पहला गाना है वो आप सभी की फरमाइश पर।

वरुण जौलकासी, महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे, छबड़ा जिला 12 राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, राजस्थान जोधपुर से अशोक प्रेमलता और सुमित बाणिया, और ये चिट्ठी है पंचगवहाण उबारखेड़ से साहिबराव वेड़कर, अमोल मिस्त्री और आनंद निहां। इसके अलावा उल्लासनगर से पुरुषोत्तम और ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर, और पतरोड़ा गंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर और डॉक्टर सुनील जनागल। आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम की पहली पेशकश है मुकेश की आवाज में पूर्णिमा फिल्म का गाना, गुलजार के बोल कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ज्वेल थीफ से है लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं, सचिन देव बर्मन का संगीत और आप सभी की फरमाइश है। श्रीगंगानगर से निकी राम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल और धनराज बांसीवाल, हावड़ा नाजिरगंज नेपाली पारा से हमारे कुछ श्रोता हैं, दीपक, स्वीटी, उषा, ज्योति, किरण, दिर्शा और रितेश लिंबू और इनका पूरा परिवार यह हावड़ा से। इसके अलावा घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, वंदना नगर इंदौर से ललिता नारायण खर्चे, संजना परी खर्चे, गणेश खर्चे, दीपिका, स्वाति और प्रयाग चौधरी और ये फरमाइश है रेखा, पूजा, नंदिनी, बबीता, शोभा रघुवंशी, स्वाति, इन सब की

इंदौर से, राजस्थान जोधपुर से, इन श्रोताओं का नाम पहले हो चुका है। तो सुनिए ज्वेल की फिल्म का ही गाना।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में श्रोता हमें लिखते हैं तमाम देशभर से चिट्ठियां, और इन चिट्ठियों के जरिए हम ये जान पाते हैं कि कहां कहां श्रोता हमें सुन रहे हैं और कौन कौन से गानों की फरमाइश करना चाहते हैं। ये पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता की चिट्ठी, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज, पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्रकांत, प्रीति और छाया, छत्तीसगढ़ बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी। और इसके अलावा ये फरमाइश जालना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अशोक भूतेकर, गणेश और कार्तिक भूतेकर। बहुत ही सुंदर लेखनी में श्रोताओं की ये चिट्ठियां। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, शर्मीली फिल्म का गीत नीरज के बोल।

ईद मंचह ईद कार्यक्रम की अगली पेशकश जो है उसकी फरमाइश आप सभी ने भेजी है। बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, राजा राम नगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, सलोजी महाजन और चीकू, ये चिट्ठी आई है खोखरिया बनाड रोड सूर्य नगरी जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले, रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा, देवेंद्र सिंह की और राजेश जैन, अरुणा जैन, दीपक जैन, गौतम, बिट्टू, मट्टू, सारिका, बनीता, मनोज जैन और समता जैन ने हमें लुधियाना के मोहल्लापुर दंबा मंडी से चिट्ठी लिखी है। वारंगा फाटा से वैष्णवी मोरे, अश्विन मोरे, कुंडलीक और पांडुरंग मोरे की चिट्ठी है और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की चिट्ठी। सितमगढ़ फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और कीजिएगा सितमगढ़ फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल आरडी बर्मन।

और अब कार्यक्रम का अगला गाना जो धरती फिल्म से है, फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सुकोडा रोडा गोला से गजानन कुमार, पद्मावती, विशाल, ज्योति और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा बड़वाहा से अयांश रावल, पुष्पेंद्र और इंदिरा रावल, चांदूर बिस्वा से रामभाऊ, लक्ष्मण भाऊ, भारत, शत्रुघ्न नारायण, पंच गवहाण तेलहारा से साहेब राव, अमोल खालिक और इनके साथी, शेगांव से मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद रिजवान। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजी। हंसल जयपुरी की बोल शंकर जयकिशन की तर्ज।

इसी के साथ अब आज का मनचाही गीत कार्यक्रम खत्म होता है। मनचाही गीत।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: हेलो हेलो नानी।
1: हाँ गुड़िया।
0: अरे हाँ हाँ मैं गुड़िया ही बोल रही हूँ, मुझे पता था आपका फोन आएगा।
1: हाँ अच्छा अच्छा जल्दी बता वो आया कि नहीं।
0: अरे रुकिए मैं खिड़की के पास ही जा रही हूँ, खिड़की तो खोलने दीजिए। हाँ बोलिए नानी, आपकी टाइम की सेंस बड़ी परफेक्ट है।
1: नानी किसकी हूँ,
0: आपका फोन आया, मैंने खिड़की खोली और मैं नीचे देख रही हूँ कि भूरे भी अपने ठिकाने पहुँच गया है।
1: अरे गुड़िया तो खिड़की पर आ भी गई फिर भी सामने वाले फ्लाईओवर का शोर नहीं सुनाई दे रहा।
0: ओ फोन नानी आप भूल गई लगता है, लॉकडाउन चल रहा है भाई, पूरा सन्नाटा पसरा है, शोर कैसे आएगा।
1: अरे बेटा मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि भूरे का डिनर हुआ कि नहीं।
0: आप भी ना नानी, डिनर तो हम करेंगे थोड़ी देर में। उफ ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, वैसे आप ठीक ही कह रहे हैं, भूरे भी तो डिनर ही करेगा ना रात में, अब भले दूध भात खाए या रोटी।
1: आज क्या मिल रहा है उसे, क्या लाया बेरा, दूध भात की ब्रेड।
0: आप उसे बेरा क्यों कह रही हैं, अरे वो तो उजला फरिश्ता है, रोज शाम अपने साथ भूरे के लिए पानी और खाना लाता है।
1: देखो गुड़िया खाना जो बनाए वो खानसामा और जो खाना परोसे वो बेरा ही हुआ ना। अच्छा ये बता तो उसे उजला फरिश्ता क्यों कह रही है।
0: अरे नानी वो इसलिए कि या तो वो व्हाइट टी शर्ट पहन के आता है या उसकी टी शर्ट में थोड़ा बहुत व्हाइट कलर होता जरूर है, और काम काम तो वो एंजल जैसा ही करता है, तो हुआ ना उजला फरिश्ता।
1: बड़ी खोज खबर रखती है रे तू उसकी है।
0: हाँ और पता है दादी क्या कहती है, वो कपड़े उजले पहनता है उसका मन भी उजला है, तभी तो हर रोज भूरे के लिए खाना लेकर आता है। पता है नानी बारिश हो तो भी आता है, और दादी ने ही उसे ये नाम दिया है उजला फरिश्ता, इनोसेंट एनिमल्स की हेल्प करने वाला एक एंजल।
1: अच्छा अच्छा अच्छा मेरी बातों की दादी, अब ये बता आया कि नहीं तेरा उजला फरिश्ता।
0: अभी तक तो नहीं आया नानी, पता है नीचे भूरे भी इंतजार में बैठा है।
2: अरे गुड़िया बेटा गुड़िया आ जाओ बेटा, तुम लोग सब लोग खाना खाने लिए तैयार हो गया, खाना टाइम हो गया।
0: ओके ओके मम्मा। अच्छा नानी नीचे भूरा खाने की वेट कर रहा है और यहाँ हमारे डिनर की भी कॉल आ गई, तो आपको बाकी रिपोर्टिंग में खाना खाने के बाद दूंगी। ओके बाय।

0: जाओ सब लोग, आगे सब लोग।
1: वाओ रायता माय फेवरेट। मम्मी और ये इतने बड़े डोंगे में आपने क्या ढक के रखा है? मैं देख लूं खोल के।
0: हाँ हाँ देखो देखो।
1: उफ, ये क्या, ये तो चावल दिख रहे हैं
0: जी,
1: और कैरेट, कैप्सिकम भी, ओ नो बीट रूट, और वो भी इतने चिपके चिपके से। मम्मी ये बिरयानी है या खिचड़ी, वो भी बीट रूट वाली, या कौन खाएगा?
0: गुड़िया लॉकडाउन में खाना मिल रहा है, शुक्र मनाओ।
2: वाह ये चावल तो मेरे हिसाब से बने हैं, चबाने की जरूरत नहीं है।
3: लाइए भाई हम भी तो चखले थोड़ा सा।
1: मम्मी आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी?
0: जिसने बनाया है ना उन्हीं से पूछो तुम।
1: ओ नो दैट मींस आज कुकिंग फिर पापा ने की है?
0: यस।
2: जिससे जो आता है वही तो करेगा। तेरे बाप से झाड़ू पोछा नहीं लगता, न ये कपड़े धो पाता है न बर्तन, अब तेरी माँ भला कितना खटेगी। बेचारा खाना बना देता है, वरना मर्दों को सिर्फ हुक्म देने की आदत होती है। हाँ
3: अम्मा एक तुम ही हो मेरी पार्टी में बस। हाँ। ये बुढ़िया तो विरोधी पार्टी में चली गई लगती है, इससे तो सिर्फ गलतियां निकालना आता है।
1: क्या पापा
0: हम बस करिए ना गुड़िया बेटा, लाओ मैं तुम्हारे लिए पराठा बना देती हूँ आज बेटा।
3: वाह वाह वाह वाह क्या बात है, विरोधियों और असंतुष्टों को अपनी तरफ करने का अच्छा पैतरा है।
0: जी हाँ वो तो है।
3: खाओ खाओ पराठे खाओ, वजन बढ़ाओ, हमें क्या है। बाद में मत कहने की सूर्य नमस्कार नहीं हो रहा
0: है। तो शुरू बस करिए है, नहीं तो एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होता।
3: अच्छा सच में?
0: हाँ
3: तो एक हमारे लिए भी बना दूँ।
0: अम्मा अम्मा देख लीजिए, अब आप देख रही है ना।
2: हाँ।
0: अपने लाडले से अपना खुद का बनाया खाया नहीं जा रहा है खाना, और आप उन्हीं की साइड में।
2: अरे बहू हम सब एक ही साइड में हैं, तू फिकर मत कर। अरे गुड़िया ए गुड़िया तू ये बता तेरी नानी क्या कह रही थी रे?
1: अरे दादी पता है उनको भूरे की इतनी फिकर होती है, इतनी फिकर होती है ना कि रोज शाम को जब तक उसके खाने की पूरी रिपोर्ट नहीं ले लेती उन्हें चैन ही नहीं पड़ता।
2: अच्छा तो तू उन्हें पूरी खबर देती है?
1: और नहीं तो क्या, भूरे की स्टोरी है ही इतनी वंडरफुल।
2: अच्छा कैसे लिखी?
1: आपको पता तो है सारी कहानियाँ।
2: अरे पर मैं भूल जाती हूँ ना रे, तू अपने नानी को जैसे प्यार से सुनाती है ना, वैसे ही जरा प्यार से मुझे भी सुनाना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है रे।
1: अच्छा तो सुनिए, वो हमारी लाइफ में मेरे कमरे की खिड़की से आया।
2: खिड़की से आया? कमरे की खिड़की से? अरे हम 12वीं मंजिल पर रहते हैं, खिड़की से कैसे बुलाया?
1: ओहो दादी आपको कहानी सुननी है ना।
2: हाँ हाँ सुना सुना सुना।
1: तो खिड़की के नीचे ठीक नीचे वो जो फ्लाईओवर है ना।
2: हाँ।
1: वहाँ रोज शाम को आता है, दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, रात को कहाँ सोता है ये भी नहीं पता।
2: अरे तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की?
1: ओहो दादी लॉकडाउन में नीचे उतरना अलाउड नहीं है, तो फाइंड आउट कैसे करूंगी? हम तो बस खिड़की से ही देखकर खुश हो लेते हैं।
2: अरे इसमें खुश होने की क्या बात है?
0: अम्मा अम्मा आपको कहानी सुनना है ना, तो बस सुनिए जो कह रही है गुड़िया।
2: हाँ हम तो सुन ही रहे हैं बहू, सुन रहे हैं।
1: हाँ तो शाम को जब डॉगी फ्लाई ओवर पर पहुँच जाता है ना, तो थोड़ी देर में एक पर्सन आता है, वही आपका उजला फरिश्ता।
2: हाँ।
1: और भूरे को कुछ खाने को देता है
2: रोज,
1: और नहीं तो क्या।
2: अच्छा
1: हम तो डेली देखते हैं और इसी की रिपोर्टिंग तो नानी को करते हैं।
3: अम्मा इस कुत्ते को पहली दफा गुड़िया और इसकी माँ नहीं देखा था, अब देखा क्या था, मदद की शुरुआत भी इसी ने की थी अम्मा।
1: हाँ रहता हमसे दूर है लेकिन है तो हमारे फैमिली मेंबर जैसा ही।
2: हाँ हाँ कुछ तो बताया था तुम लोगों ने, अब याद नहीं।
3: गुड़िया याद करूँ यार, वो रात कैसी थी है?
0: हाँ।
3: हम घंटों खिड़की से देखते रहे, लैंप पोस्ट के आसपास वो कभी इधर उधर चलता, कभी बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता, खड़ा रहता तो न जाने कितनी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहता। लॉकडाउन शुरू हुए अभी, क्यों अभी 3-4 दिन हुए थे।
0: हाँ, हाँ, इसी समय की तो बात है।
3: दहशत फैली हुई थी, ट्रैफिक बहुत कम था, फिर भी कोई स्कूटर वाला निकलता तो कुत्ता उसकी ओर लपकने लगता। अरे साफ लग रहा था कि वो किसी का सहारा ढूंढ रहा है।
0: हाँ ये बात तो है, लेकिन कितने डरावने दिन थे, दुकान बंद, दफ्तर बंद, लोगों का आना जाना बंद, और मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई मेरा किचन कैसे चलेगा। और हाँ देखिए आप भी तो जानते ही हैं, हम लोग कभी राशन तो जमा करके हमने रखा ही नहीं था, तो चिंता लगी।
1: ओ मम्मा भूरे की बात बताइए ना।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ अब खिड़की से

0: देखते देखते अम्मा कई घंटे बीत गए। एक तो ऐसी ये सुनसान जगह, पैदल कोई आता ही जाता नहीं, और दोनों तरफ इतने बड़े दानवादार टावर, और बीच में इतना चौड़ा फोर लेन वाला फ्लाईओवर, इतने बड़े महानगर के इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ के टावरों में अम्मा हजार दो हजार फ्लैट तो होंगे, पर इनके ठीक नाक के नीचे सूखी नदी जैसा फ्लाईओवर, जहां न आदम न आदम चाट। और पहले तो दिन भर बरसाती नदी की तरह ट्रैफिक से भरा रहता था, पर लॉकडाउन में तो जैसे भूतों का डेरा बन गया है। हमें तो लग रहा था कि ये बेचारा पिद्दू सा तो है, इतनी अकेली जगह पे भटक कर पहुंच गया, और अब उसे यही नहीं पता चल रहा था क्यों जी कि कहां जाए, कैसे करें और कैसे बस्ती में पहुंचे।
1: ए बहू, तू भी क्या क्या बोले जा रही है।
0: हाँ अम्मा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जरा सोचिए, सोचिए जरा सा, ये 30-30 मंजिला पर्वत खड़े हैं धरती की छाती पर इनके अंदर की दुनिया कोई और ही है। इन्हें जमीन नहीं दिखाई देती, बस काम से काम रखते हैं इसमें रहने वाले। अम्मा
1: बहू, हम भी तो ऐसे ही टावर में रहते हैं ना।
0: हाँ तो अम्मा, हम भी तो उनके ही जैसे हैं ना, हम भी तो में सिमटे रहते हैं।
1: हाँ।
0: पर उस दिन, हाँ अम्मा, उस दिन न जाने कैसे हमारी भी नजर नीचे झुक गई, वरना दोनों तरफ के टावर में लोग ही लोग हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई पड़ा, बस हमें दिख गया ये बेचारा।
2: अरे हो सकता है और भी लोगों ने देखा हो, पर हिम्मत ना पड़ी हो कुछ करने की। अब तुम्हें याद है ना, हम भी हाँ। तो घंटों देखते रह गए थे उसको।
0: हाँ वो तो है, लेकिन हमें भी तो नहीं समझ में आ रहा था ना कि क्या करें, कैसे करें, कैसे इस पिल्ले को पुचकारे, बचाए और कैसे लेके आए। और याद है ना यहाँ से कैसे हमने ब्रेड का टुकड़ा फेंका था।
2: हाँ।
0: लेकिन वहाँ कैसे पहुँचता है, इतनी दूर था।
2: तब अम्मा हमारी इस गुड़िया ने ही आइडिया दिया।
1: क्या, घर लाने का?
2: अरे नहीं अम्मा, घर लाए होते तो मालूम नहीं चलता क्या। अरे जाकर उसे कुछ देने का, और इसने मुझे अकेले जाने भी नहीं दिया, क्यों याद है ना तुम्हें?
0: हाँ हाँ, हाँ
2: गुड़िया, उस रात क्या हुआ था याद है?
3: पापा, पापा, पापा!
2: अरे क्या है बेटा, क्या हो गया?
3: पापा जल्दी इधर आइए, जल्दी आइए तो।
2: अरे क्या है बताओ।
3: पापा, पापा देखिए ना, वो नीचे बेचारा कितना टायर्ड और हंगरी लग रहा है। आई थिंक ही इज लॉस्ट।
2: हाँ, भूखा और परेशान है लगता, कहीं तो भटक के आ गया।
3: यहाँ से देखते रहने से कुछ नहीं होगा, वी मस्ट डू समथिंग।
2: अरे हम क्या कर सकते हैं भाई?
3: पापा क्या हम उस बेचारे पपी को कुछ खाने को दे आए, प्लीज पापा?
2: इस समय लॉकडाउन में?
3: प्लीज पापा।
2: बेटा कर्फ्यू लगा हुआ है, रात का टाइम है, नहीं नहीं नहीं नहीं जा नहीं सकते।
3: अरे पापा ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा मामा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए तो, पता नहीं कितने दिन से भूखा है, बेचारा मर जाएगा।
2: अरे देखते देखते, भूखा तो है, सोचने दो।
0: हाँ।
2: अच्छा एक काम करते हैं, अब मैं चला जाता हूँ। हाँ, कुछ दे आऊंगा। ठीक है, तुम एक काम करो, कुछ ब्रेड व्रेड पड़े हो तो दे दो कुछ।
0: हाँ हाँ मैं बिल्कुल देती हूँ। मैं ऐसा करते हैं कि पानी भी दे दी ले जाइए, और ये बिस्किट भी ले जाइए, है ना।
2: हाँ।
0: और लेकिन रुक रुक रुक, ऐसा करती हूँ मैं रोटी बना के लाती हूँ फटाफट। लीजिए ये सामान, हमने सब थैले में रख दिया। ठीक है, ये देखिए पानी है ना, और रोटी, दोनों चीजें हैं, और ये सामान रख दिया, उसको पानी वानी पिला दीजिएगा। और मास्क कहाँ है आपका?
2: अरे हाँ लगा लिया है।
0: सैनिटाइजर रखिए भाई।
2: अरे रखा है भाई।
3: अरे रुकिए रुकिए, अरे मुझे भी तो जाना है, मुझे उसे पास से देखना है।
0: तुम वहाँ क्या करोगे?
2: अरे कह रही है तो जाने दो ना,
0: कमाल है आप तो।
2: तुम डरोगी तो नहीं ना?
3: नहीं नहीं पापा, बिल्कुल नहीं।
2: हाँ चल चल चल,
0: तुम डरोगी नहीं, ये क्या है
3: मामा, प्लीज।
2: चलो चलो चलो, लिफ्ट बुलाओ और तुम दरवाजा बंद कर लेना अंदर।
3: हाँ हाँ पापा आइए।
4: कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
0: अम्मा ये लीजिए, आप ऐसा करिए दवा ले लीजिए सोने के पहले वाली, और ये हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए।
3: बहू क्या बात है, बड़ी हड़बड़ी में दिख रही है, बाहर ये आवाजें कैसी आ रही थी बहू?
0: अरे वो बाप बेटी नीचे गए ना अम्मा। अरे अम्मा आप दूध पी के सो जाइए
3: इतनी रात को। लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना बहू?
0: अरे अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, दूध पीजिए और सो जाइए, वो लोग आ जाएंगे।
1: पता नहीं यहाँ क्या क्या चलता रहता है।

0: मैं सोचती हूँ खिड़की के पास जाकर देखती हूँ, पता नहीं पहुंचे कि नहीं वो लोग। हाँ तो पेड़ बीच में आ रहा है, लगता है अभी पहुंचे नहीं। क्या करूं, बड़ी चिंता। मैं सोचती फोन कर लेती हूँ। हेलो, अरे तो फोन ही नहीं उठा। हेलो हेलो गुड़िया।
1: हेलो
0: हाँ मम्मा, तुम लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं।
1: अरे मम्मा उड़कर थोड़ी ना पहुंच जाएंगे, पैदल चल रहे हैं भाई। और पता है मेन गेट पर सिक्योरिटी वाले बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे।
0: क्यों भला?
1: कितना समझाना पड़ा उन्हें, और आज बाहर हवा भी चल रही है।
0: हवा?
1: और सड़क पर बहुत सारे डोंगसे मम्मी, सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अच्छा आप फोन रखिए, आप खिड़की पर ही है ना?
0: हाँ हाँ मैं यही हूँ।
1: हाँ तो हम पहुँचेंगे तो आपको दिखी जाएंगे, आप बस वेट करिए।
0: अच्छा
2: बहू बहू आ गए वो लोग क्या?
0: अरे अम्मा आप यहाँ आ गई। अम्मा आप फिकर क्यों कर रही हैं, वो लोग आ जाएंगे, आप आराम कीजिए।
2: अरे आराम कहाँ से होगा बहू, इस कोरोना का ऐसा डर बैठ गया है कि सपने भी बुरे बुरे आते हैं। इतना डर तो आजादी मिलने के दिनों में भी नहीं लगा था।
0: आजादी? अम्मा आजादी मिलने पर डर क्यों भला लगा, और मतलब आप तो उधर से आई भी नहीं थी फिर।
2: आजादी मिलने का नहीं, जो मारकाट मची थी उस वक्त उसका डर। हम कहीं से उजड़ कर नहीं आए थे, पर आतंक ऐसा था कि अब हम क्या कहें।
0: अम्मा आपकी उम्र क्या थी उस समय?
2: अरे वही 5-6 साल की रही होंगी। हम बच्चों को घर में बंद कर दिया गया था, सबको डर था कि लड़कियों को उठा ले जाते हैं। पर आज का वक्त ये तो बहुत ही डरावना है, किसी को हम छू नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, सैर करने तक हम नहीं जा सकते।
0: अरे अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या, आप तो पहले भी कहीं सैर वैर करने नहीं जाती थी भाई।
2: पर डर का साया तो 2400 घंटे है ना, और ऊपर से ये मुआ टीवी मरीजों की गिनती मरने वालों की गिनती ऐसे बताता रहता है जैसे मौत का खेल चल रहा हो। इतने बीमार पड़ गए, इतने मारे गए।
0: अरे अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा आप घबराइए मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत रहिए।
2: हाँ।
0: मैं खिड़की से देखती हूँ कि वो लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, है ना?
2: हाँ हाँ देख देख
0: ठीक है,
2: आ जाए तो जरा मुझे बता देना।
0: उठाती गुड़िया, गुड़िया पहुंच गए तुम लोग? हाँ हाँ मैं खिड़की की तरफ ही आ रही हूँ। हाँ लो मैं आगे खिड़की पर, अब रुको। हेलो अरे फोन मत बंद करना। हाँ हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। अरे पर आवाज तो बेटा फोन पे ही सुनाई देगी ना। अरे अम्मा आप, हाँ लो दादी भी तेरी यहीं आ गई। अम्मा देख रही हैं ये लोग नीचे ही खड़े हैं, पहुंच गए उस बेजुबान प्राणी के पास।
2: हाँ बहू एक मिनट, मुझे भी तो आगे आने देना, खिड़की के पास आने दे जरा।
0: हाँ अम्मा ये हम कुर्सी यहाँ रख देते हैं, आप यही बैठिए, आइए आइए बैठिए। मैं फोन को भी स्पीकर पर ऑन कर देती हूँ ताकि अम्मा आप लोग को भी ना इन लोगों की आवाज सुनाई दे, सब बातें पता चल जाए। गुड़िया गुड़िया सुन, पहले उसे पानी पिला।
1: हाँ मम्मा। मम्मा आप देख रहे हो,
0: हम
1: जो कटोरा लाए थे ना उसमें उसमें पानी डाल दिया। मम्मी देखो ना कैसे पूंछ हिला रहा है और डर भी रहा है। आ गया आ गया, पानी के कटोरे के पास आ गया।
2: अरे लग रहा है रोटी भी खिला रहे हैं।
0: अब पर अम्मा रोटी सूंघ के तो पीछे हट गया।
2: अरे डर रहा होगा ना शायद।
1: मम्मा इसे ना बहुत प्यास लगी है, आप देख रहे हो कितने तेज तेज पानी पी रही है।
0: पता नहीं कब से प्यासा था, और भैया मेरा तो मन कर रहा है कि उसे पुचकारूं, प्यार करूं, छोना सा तो है।
3: पुचकारने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है मैडम, अब तुम लोग आसमान में टंगे हो।
1: आसमान नहीं स्वर्ग में बैठे हैं।
2: हाँ बड़ा स्वर्ग, स्वर्ग में बैठे हैं। अरे कैदी है कैदी, माचिस की डिबिया में। हाँ
3: खुद को खुशकिस्मत समझो अम्मा, लाखों करोड़ों में मिलती है ये माचिस की डिबिया।
0: भाई कमाल है, इतनी दूर खड़े हैं फिर भी चैन नहीं है, बस बहस करा लो इनसे जब चाहो तब।
3: बहस नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ।
0: अच्छा पहले आप उस जो बेजुबान प्राणी के लिए गए ना उसकी सेवा करिए, और जरा फिर ये बताइए इतनी देर कहाँ भटक रहे थे आप दोनों? 15 मिनट का रास्ता, पूरे 2 घंटे लगाए आप लोगों ने।
3: जमीन आसमान का फर्क यही होता है मैडम, समझे आप? मतलब हम समझा दें आपको जमीन आसमान का मतलब, यहां जहां हम खड़े हैं वहां पहुंचने के

0: बड़े मोड़ हैं
1: जी।
0: जब हम चलने लगे तो पहले सुनसान रास्ता आया, डरावना, अंधेरा, तेज हवा चल रही थी, कागजों, प्लास्टिक और तमाम चीजों का कचरा उड़ने लगा, गलियों से कुत्ते निकलकर भौंकने लगे, छीना चपटी करने लगे, अजीब सा अंधड़ चलने लगा, कूड़े कचरे की बारिश होने लगी। रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था।
1: क्या कह रहे हैं आप, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, न हवा न बारिश।
0: कह तो रहा हूँ, जमीन पर हालात कुछ और ही होते हैं।
2: अरे क्या ऐसा है बोले जा रहे हैं, आप गुड़िया को फोन दीजिए।
3: अरे बहू क्यों गुस्सा कर रही हो?
2: अरे अम्मा आप रुकिए, गुड़िया गुड़िया ये पापा तुम्हारे क्या कहे जा रहे हैं?
4: हाँ मम्मा, सच में बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। हाँ? सुनिए तो, फिर पहला मोड़ आया तो वहाँ बहुत लोग थे। लोग क्या थे, प्रोसेशन जैसा ही था, एक जुलूस, लोग बच्चे बूढ़े मर्द औरतें सिर पर गठरियां उठाकर चले जा रहे थे, पैदल साइकिलों पे, साइकिल रिक्शा पे, किसी भी तरह बस चले जा रहे थे। रादर दे वर रनिंग, यू नो, रनिंग अवे फ्रॉम सिटीज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट मामा, टू देयर नेटिव प्लेसेस मामा, दे वर एस्केपिंग, माइग्रेटिंग।
2: अरे ये सब तो टीवी पर आता है, प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं और क्या।
4: हाँ, टीवी जैसा ही पर एकदम रियल, लाइव, जिंदा। एक बच्चा सिर पर बैग उठाकर चला जा रहा था।
2: अच्छा,
4: मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने रिप्लाई ही नहीं दिया, भाग गया। पता है मम्मी, एक अंकल थे बूढ़े से, नंगे पैर मम्मा।
2: अच्छा,
4: और उनके पैरों में चोट लगी थी। पता है मम्मा कितना ब्लड आ रहा था, और पापा को इतना वरिड मैंने कभी नहीं देखा मम्मी।
2: अच्छा,
4: जितने वो सीन को देखकर हुए। एंड यू नो
2: क्या,
4: यू नो पापा ने क्या किया?
2: क्या?
4: पापा ने अपने स्लीपर्स उन अंकल को दे दिए मम्मा।
2: अच्छा,
4: अब देख सकते हो पापा उसके बाद नंगे पैर चल रहे हैं।
2: है? हाँ हाँ हरम, सच में नंगे पैर ही हैं। अरे अम्मा अम्मा देखिए तो जरा सा, इन्होंने तो
3: हुआ?
2: अरे अम्मा ये देखिए तो, इन्होंने स्लीपर अपनी दे दी किसी को।
3: अरे
2: हाँ, इनके पैर दुख रहे होंगे गुड़िया।
3: कोई बात नहीं, कोई बात।
2: अरे गुड़िया गुड़िया पापा को फोन दो। हेलो हेलो।
5: हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ?
2: अरे आप नंगे पैर हैं, सड़क चुभ रही होगी आपको।
5: नहीं नहीं, आज तो जमीन को फील कर पा रहा हूँ। जानती हो, जिंदगी को इस तरह कभी नहीं देखा। जिंदा बचा रहने की इच्छा का परम रूप, चरम रूप, जिजीविषा शायद इसी को कहते होंगे। ये लोग इस अंधेरे वक्त में दिखे, इन्हें एहसास हो गया कि इन्हें कोई नहीं बचाएगा, न साहूकार, न सेठ, न सरकार, न अमीर, न गरीब। खुद ही खुद को बचाना होगा, अपने ही पैरों पर भरोसा करना होगा। ये लोग न जाने कब से चल रहे हैं, और इन लोगों को न जाने कब तक चलते रहना है।
1: ये कौन लोग हैं?
5: यही तो विडंबना है, ये लोग हमारे ही शहरों में थे, हमारे शहर इनके ही बनाए हुए थे, ये शहर इनके चलाए ही चल रहे थे, पर ये आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे लिए इनका अस्तित्व ही नहीं था,
0: ये हमारी ही तरह हाड़ मांस के जिंदा इंसान है।
1: आप क्या कह रही हैं? मुझे तो लगता है आपने कोई सपना देख लिया है, और वो भी जाते हुए।
0: ये हमारे जैसे लोगों के लिए सपना ही है, कल्पना से भी परे, पर हकीकत, जमीन पर उतरकर ही इसे जाना जा सकता है। अरे जानती हो, हमारा डर तो दाल रोटी के साथ सब्जी न मिलने का डर है। काम वाली नहीं आएगी तो उसके बगैर काम कैसे चलेगा, इसका डर है। पर पता है
1: क्या,
0: इनका डर भूखों मर जाने का डर है। इन्हें यही डर है कि जिंदा बचेंगे कि नहीं। इन लोगों ने इसे भोगा है, मैंने नहीं भोगा, सिर्फ करीब से देखा है, और तहल गया हूं, अंदर तक तहल गया हूं।
4: सच पापा, बड़ी वियर्ड रात थी वो। ओ माय गॉड, आज भी याद करके गूज़बम्स हो जाते।

0: क्या गूंज हो जाते हैं, क्या बक रही है?
1: अरे अम्मा, रोंगटे खड़े होने को अंग्रेजी में गूंज बम्प कहते हैं। अरे अम्मा, तुम इसे कभी कभी अपनी भाषा भी समझाया करो यार।
0: हाँ हाँ पापा, लेकिन उस रात पप्पी को जो पानी पिलाने का एक्सपीरियंस था ना, वो मेरी लाइफ का डीप बेस्ट एक्सपीरियंस था।
2: हाँ, तभी तो तुमने ढिंढोरा पीट दिया, हाय हाय अनाथ कुत्ता है, मर जाएगा।
0: अरे नहीं दादी, मैंने तो बस सोशल मीडिया पर शेयर किया था, मुझे डर लग रहा था कि हम इतनी दूर रोज रोज थोड़ी ना जाएंगे उसे खाना खिलाने।
2: हाँ, तो इसीलिए तो आ गया ना तुम्हारी मदद करने के लिए वो उजला फरिश्ता।
0: सच्ची, और तब से देखो वो पपी, अरे जिसे आप भूरे कहती हैं,
2: हाँ,
0: दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन रोज शाम को फ्लाईओवर पर आ जाता है ठीक हमारी खिड़की के नीचे।
2: हाँ।
0: और आपको पता है एक लेन जो खाली रहती है ना वहीं पर, और वो पर्सन वहीं आकर जॉगिंग करता है, पहले भूरे को खाना खिलाता है, फिर अपना मोबाइल चेक करता है, फिर 10 चक्कर यहाँ से वहाँ लगाता है, और पता है ये भूरे लाल उसके आगे पीछे नाचते कूदते रहते हैं। पता है दादी, बारिश हो जाए ना तो भी इन दोनों की रूटीन नहीं टूटती।
3: अरे अम्मा, जब से ये भूरे को इन्होंने क्या देख लिया, उसकी सेवा क्या करने लगी, बस सोते जागते बस भूरे की कहानी, भूरे की कहानी दादी को सुनाएंगी, फिर नानी को सुनाएंगी। भाई,
1: अरे तुमको याद नहीं उस दिन पेरेंट्स मीटिंग के बाद जब तुम वापस आई तो तुम्हारे साथ सहेलियां भी आई थी तुम्हारी?
3: बिल्कुल,
1: उनको दिखाने बैठ गई, उनको बताने लगे, उनको ले गई अपने साथ कि चलो हमारे साथ हमारे भूरे को देखो,
3: और वो तो उसके संग संग उजले फरिश्ते को भी देखो। ठीक है, बेजुबान प्राणी की सेवा तो हम सबको करनी ही चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है, प्राणी की सेवा करना परम धर्म है, और ये जो इस समय कोरोना का समय चल रहा है इसमें ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बेजुबान जानवर आखिर हमारे ही तो भरोसे हैं, तो ये करना बहुत जरूरी
3: है। बस बस बस शुरू हो गया, ये इनको मौका मिला गुड़िया, और तुमने मौका दिया और पापा शुरू हो गए। अच्छा सब लोग बस करो, और गुड़िया चलो आओ, सब पराठे खा लो, आ जाओ आ जाओ।
0: क्या मम्मी पापा आप भी ना, अरे भूरे तो हमारा हीरो है, आप लोग भी ना। हाँ। ओ नो, देखो ना बातों में तो मैं भूल ही गई, आज भी आ गया होगा अब तक, और नानी भी मेरा वेट कर रही होंगी। अरे मुझे उन्हें रिपोर्ट देनी है ना भाई, मैं तो जा रही हूँ खिड़की पर। हेलो हेलो नानी।
4: गुड़िया,
0: अरे आप जाग रही हैं?
4: हाँ बेटा, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ।
0: इज इट? क्या बात है,
4: जल्दी जल्दी बता, क्या वो आया? क्या क्या कर रहा?
0: हाँ हाँ नानी, अब सुनिए तो इत्मीनान से, मैं आपको पूरी रिपोर्टिंग दूंगी, पूरी गुड़िया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम खिड़की, आप बस सुनते जाइए। हाँ तो नानी, मैं देख रही हूँ कि उजला फरिश्ता आ चुका है, उसने अपने बैग से कुछ निकाला, अब वो रोटी है या ब्रेड ये तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से, लेकिन भूरे लाल भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं इतना दिख रहा है। अब खाना खत्म भूरे लाल का, और भूरे की मस्ती शुरू। उजला फरिश्ता अब तेजी से सैर कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, और ये भूरे लाल कभी उसके आगे कभी उसके पीछे उछल कूद कर रहे हैं। नानी आप बस सुनती चलिए। और ये मैं क्या देख रही हूँ, ओहो भूरे ने उछल कर फरिश्ते की पैंट पकड़ ली, और पैंट छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए उजला फरिश्ता, ओह मैं कह सकती हूँ नानी की भूरे बड़ा खुश है, और नानी भूरा खुश है तो मैं खुश हूँ, और मैं खुश हूँ तो नानी आप खुश हैं, है कि नहीं?
4: बिल्कुल खुश।
0: तो नानी आज की रिपोर्टिंग के बाद अब तो आपको नींद आएगी ना?
4: हाँ बेटा जरूर आएगी।
0: तो ठीक है, आज आप सो जाइए आराम से इत्मीनान से, मैं कल शाम को आपको फिर कॉल करके रिपोर्ट करूंगी। ओके गुड नाइट नानी, बाय बाय।
1: गुड नाइट गुड़िया, बंद करो बेटा फोन अपना, इधर आओ, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं, तुम्हें खिचड़ी टाइप बिरयानी अच्छी नहीं लगी थी ना?
0: हाँ।
1: तो जानती हूँ मैंने क्या किया?
0: क्या बताया पापा?
1: दूध लाया।
0: हाँ?
1: दूध तो मिल रहा है लॉकडाउन में,
0: लेकिन मुझे दूध अच्छा नहीं लगता।
1: मालूम है मुझे, इसीलिए मैंने उसका छेना बनाया।
0: क्या बात है,
1: और छेने के बाद उसके संदेश बनाए।
0: इज इट
1: बंगाली संदेश?
0: ओ वाओ पापा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
1: ग्रेट। तो मीठे मीठे संदेश खाओ, और हाँ अपनी मम्मी को भी खिला देना, हमेशा कहती ना कि यही खाते रहते हैं हमेशा।
0: वाओ यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट।

अभी आप सुन रहे और धे अनूप सेठी का लिखा नाटक जमीन आसमान। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार था। माँ रेणु चतुर्वेदी,

0: फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मिया, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सईद परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
2: जी, आपने थिएटर किया, दूरदर्शन के दुनिया भर के सीरियल्स बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में बनाई, आपने फिल्में भी बनाई। फिल्में बनाने का विचार कैसे आया?
3: देखिए, क्या है, कला एक नदी है
2: जी,
3: तो नदी जब अपने स्रोत से शुरू होती है तो बहुत छोटी होती है, फिर आते आते धीरे धीरे धीरे और उसका जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वो समुद्र होता है। तो फिल्म जो है ना, समुद्र है
2: जी,
3: तो वहां आना ही था। मुश्किल होता है क्योंकि फिल्म में बहुत पैसे की जरूरत होती है, फिल्म का जो कैनवास है हर तरह से बड़ा होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे चांस मिल गया फिल्म बनाने का। और उससे ज्यादा सौभाग्यशाली ये रही कि मेरी तरह का सिनेमा जो ऑफ बीट है, एक नई तरह का, जैसे मैंने आपको बताया हार्ट मेरी पहली फिल्म थी, उसमें मैंने शारदा वाला कैरेक्टर तो लिया ही है, जो वो एक गांव की लड़की है जो बिक रही है, और उसके साथ मैंने एक कैरेक्टर लिया है जो पास्ट की लड़की है, बुद्ध पीरियड की लड़की है, उससे पहले की लड़की है, जो तब की है जब भी बिकती थी महिलाएं, स्त्री। तो वो उसकी आत्मा इससे मिलती है, पास्ट और प्रेजेंट को मैंने दोनों
2: को मिलाया है।
3: और वो कहती है मैं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक तू मुक्त नहीं होगी, तू अपनी मुक्ति देख। तो वो उसको वो प्रेरणा देती रहती है। तो इस तरह का सिनेमा बनाने का सौभाग्य मिला मुझे और काफी इंटरनेशनल इसको अप्रिसिएशन भी मिला फिल्म को,
2: काफी चर्चा हुई इन फिल्मों की। और इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि मिस्टर कबाड़ी और द वीकली बाजार जैसी ऑफ बीट फिल्मों का आपने निर्देशन किया, तो क्या अनुभव रही है फिल्में बनाने के?
3: हार्ट द वीकली बाजार का तो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सारे कलाकार बहुत मन से काम कर रहे थे। दिव्या दत्ता थी, अर्चना पूरन सिंह थी, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, ये सब लोग थे, और म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, अशोक चक्रधर ने गीत लिखे थे, अली गनी जो है पद्मश्री है अभी, उन्होंने संगीत दिया था, तो वो तो बहुत

0: अच्छा रहा। मिस्टर कबाड़ी जो थी वो कॉमेडी फिल्म थी जी। लेकिन एक गरीब आदमी जब अमीर हो जाता है तो उसकी क्या त्रासदी होती है। गरीब जब तक रहता है तो कोई दुख नहीं है, अमीर होते ही सारे दुख शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उन अमीरों में शामिल देखना चाहता है। जो अमीर है वो अपनी क्लास कॉन्शियस है, इलीट क्लास वालों में रहना चाहता है, वो क्लब में जाना चाहता है, और वो लोग उसको मुंह नहीं लगाते। पैसा है लेकिन उसमें भी ये कहने की कोशिश की है कि मतलब आप जिस क्लास से हैं, पैसा आ जाए तो उसको सुविधा के लिए होता है पैसा, और उससे कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं, आप जहां हैं वहां बहुत खुश हैं।
1: सबसे बड़ा संदेश,
0: सबसे बड़ा जी।
1: तो ये बड़ा अच्छा आपने कंट्रास्ट इस तरह का उस फिल्म में लिया था। तो मुख्यधारा की मसाला फिल्मों से अलग ही फिल्में थी, दशकों तक कहां तक पहुंची होंगी फिल्में, आप क्या सोचती एक निर्देशक होने के नाते?
0: अब तो ओटीटी आ गया है और ओटीटी पे है तो काफी लोगों ने देखा उसको, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत बड़े वाले स्टार नहीं थे इसलिए जब सिनेमा में आई तो उतना नहीं हो पाया, छोटे बजट की फिल्म थी। आजकल क्या है कि आपको फिल्म के प्रमोशन के लिए 10-15 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है छोटी से छोटी फिल्म का, तब लोगों तक पहुंचता है। हमारे पास तो उतना था नहीं, प्रोड्यूसर के पास उतना नहीं था। पहली फिल्म NFDC की थी, उनके पास भी उतना तो प्रमोशन के लिए नहीं था। लेकिन अब जब OTT पे आई है तो अब वो बहुत लाखों लोगों ने देखी है,
1: जन जन तक
0: पहुंची, जन जन तक पहुंची है OTT की मेहरबानी से।
1: लेकिन इसमें कलाकार तो बहुत अच्छे थे और
0: नहीं, कलाकार अच्छे हो, फिल्म भी अच्छी हो, लेकिन लोगों को पता कैसे चले कि एक अच्छी फिल्म आ रही है, उसके लिए आपको प्रमोशन की जरूरत होती है। प्रमोशन के लिए पैसा लगता है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं,
1: एक मार्केटिंग बहुत,
0: मार्केटिंग के लिए जी जी।
1: तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सीमा जी को किस तरह का सिनेमा पसंद है तो क्या कहेंगी आप? आपको व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का सिनेमा पसंद है?
0: मुझे अलग अलग तरह का, मूड के हिसाब से। मैं वेस्टर्न सिनेमा देखती हूँ बहुत, और मुझे कभी रोमांटिक फिल्में पसंद आती हैं, कभी मुझे बहुत गंभीर फिल्में देखने का दिल होता है। ऑल टाइम हिट जो फिल्में हैं जैसे डॉक्टर जिवागो और बहुत सारी ऐसी फिल्में, थ्रिलर हैं, हर तरह का सिनेमा मैं देखती हूँ, लेकिन शर्त है कि वो क्लासिक और अच्छा होना चाहिए। और फिर आपके मूड पे भी है, कभी कभी बचपन याद करने के लिए राजेश खन्ना जी का फिल्म देखने का मन करता है कि वो फिल्में, वो याद, वो दौर है ना जी। बाकी मुझे सत्यजीत रे का सिनेमा, ऋतिक घटक का सिनेमा, इंडियन में अपना ऋषिकेश मुखर्जी, ये इन लोगों का देख के आपको मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, और बहुत सहज इनका फिल्म मेकिंग रही है, बहुत सहज रहा है, कोई बहुत ऐसा नहीं कि ऐसे शॉट ले रहे हैं, वैसे शॉट ले रहे हैं,
1: लाउड सिनेमा नहीं,
0: बिल्कुल नहीं। और आप और हमारे इर्द गिर्द की कहानी, हमारे आसपास ही किरदार, आपको लगता है कि हाँ ये वो है हमारे अपने, ऐसा सिनेमा जिसे आज रियलिस्टिक सिनेमा बोलते हैं वो मुझे पसंद है।
1: चलिए तो आपकी पसंद का एक गीत सुनते हैं, फिर जरूर आगे बढ़ाते हैं।
0: कल्याण जी आनंद जी का फिल्म मेरे हमसफर का, किसी राह पे किसी मोड़ पे,
1: आइए सुनते हैं।

0: रीमा जी, बात चल रही है आज आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर, आपकी पसंद की फिल्मों पर। एक स्त्री होने के नाते आपने कहा कि बहुत संघर्ष किया आपने, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कभी मन में आया, इस तरह का लेखन, इस तरह की कहानी?
1: ज्यादातर तो मैंने स्त्री प्रधान ही फिल्म या सीरियल्स जो भी हैं बनाई हैं, जैसे अभी हार्ट तो वो ही थी, और अभी जो मैं बना रही हूँ पतंग मसाला, वो भी एक लड़की की कहानी है, वो भी स्त्री प्रधान ही है। और सीरियल्स जो बनाए हैं वो भी स्त्री के इर्द गिर्द ही ज्यादातर घूमते थे। अभी जो अवंतिका जो सीरियल बनाई है वो चूंकि इतिहास है, तो आप उज्जैन का इतिहास लिया है मैंने, जब कृष्ण आए उज्जैन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने, तब से लेके विक्रमादित्य तक, तो उसमें स्त्री कैरेक्टर बहुत सारे। एक मैं अभी एक प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, वो है वामा नाम रखा है उसका, स्त्री को कहते हैं वामा
0: जी, जी।
1: तो मैंने वैदिक काल की जितनी विदुषी महिलाएं थी उन पे बना रही हूँ मैं, अपाला और ना भारती और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, तो उस तरह की जो कि वैदिक पीरियड में हमारी स्त्रियों कितनी ज्ञानी, लोपा मुद्रा और ये सब, तो उन पे बनाने का सोच रही हूँ मैं
0: जी। तो कहाँ तक पहुँचा आपका ये प्रोजेक्ट जिस पर आप बनाने की सोच रही हैं? और
1: लेखन तक है अभी, और होपफुली इस फिल्म के बाद जो मैं अक्टूबर में शूट कर रही हूँ पतंग मसाला, उसके बाद वो शुरू कर देंगे।
0: क्या लगता है आपको इस तरह का जब आप लेखन करती हैं तो आपको एक आत्मसम्मान, एक आत्मसुख, मतलब एक सुकून मिलता है?
1: देखिए, स्त्री होने के नाते मतलब स्त्री की संवेदना जो है उसको केयरने में मुझे लगता है कि मैं काफी करीब हो जाती हूँ स्त्री के, तो मुझे फिर उसको पढ़ना और गढ़ना उस कैरेक्टर को आसान हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ और स्त्री के सारे संघर्ष मैंने देखे हैं। मेरी माताजी, मेरी मौसी, मेरे जो महिला दोस्त हैं उनकी जीवन को मैंने देखा है, तो उसे उतारने में बहुत आसान लगता है मुझे उसकी संवेदनाएं। और

0: कई पुरुषों लेखकों ने, जैसे प्रेमचंद हैं, वो पुरुष होके भी उन्होंने स्त्री का इतना सुंदर रेणु, टॉलस्टॉय ना, दोस्तोवस्की, गोरकी, इन्होंने बहुत खूबसूरती से स्त्री का, सबसे ज्यादा आपके शरदचंद, उन्होंने तो स्त्री का ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई स्त्री बैठ के लिख रही है।
1: जिस तरह से उन्होंने लिखा, लगता ही नहीं कहीं कि एक पुरुष ये बात लिख रहा है। स्त्री की पीड़ा, स्त्री के संघर्ष को, स्त्री के जज्बातों को, स्त्री की फीलिंग्स को जिस गहराई में जाकर इन लेखकों ने लिखा, तो आप एक स्त्री होकर जब वो लिख रही है तो जाहिर है कि आप उस गहराई तक पहुंच पाती हैं जहां स्त्री को पहुंचना चाहिए।
0: जी, कोशिश करती हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उस गहराई में मैं पहुंच गई है मेरी लेखनी, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितने संसार में स्त्रियां हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं, ढेर सारी समस्याएं, तो उनको कहने में मैं इतनी तो कॉशस रहती हूँ, सचेत रहती हूँ कि उसकी गरिमा को रखते हुए, स्त्री की गरिमा को रखते हुए। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि स्त्री के पक्ष में हूं मैं, लेकिन मैं पुरुष के विपक्ष में नहीं हूं, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, क्योंकि संसार दोनों से चलता है, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री अच्छी है तो पुरुष खराब है, ऐसा नहीं है। देखिए, पावर गेम है ये, पुरुष के हाथ में जब पुरुष सत्ता थी या है तो वो उसका दुरुपयोग भी कर देता था, लेकिन वही हम देखते हैं कि बहुत सारे निर्देशक, मैं अपनी कला से संबंधित ही लोगों की बात चर्चा करूंगी, और लेखक इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने कभी अत्याचार नहीं किया स्त्री पे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मेरी माता का मैंने जो सम्मान देखा है मेरे पिता की नजरों में, उन्होंने तुमने ही बोला माँ, जबकि उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन वो कम्मोजी बोलते थे, वो कमल नाम था, कमल शबनम उनका तखल्लुस था, तो वो हमेशा कम्मोजी आप ये कर दीजिए आप जनाब। तो हमने तो वो लोग देखे हैं जो स्त्री को इतना सम्मान देते थे।
1: आज एक लंबी बातचीत आपसे हम कर रहे हैं, लेकिन अब एक गीत हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी।

0: बात की लेखिकाएं भी स्त्री विमर्श पर लगातार चर्चाएं करती हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो उससे एक अलग दिशा की ओर जा रही हैं। जब हम बात करते हैं स्त्री विमर्श पर, तो वही आपने कहा कि वो पुरुष विरोधी होकर जब लिखा जाता है तो स्त्री विमर्श फिर स्त्री विमर्श नहीं रह जाता।
1: देखिए, आप है ना, संसार में चलाने के लिए ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आप ये कहें कि पुरुष खराब है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले ही रहेंगे, तो हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दोनों की जरूरत है। जैसे वो बड़ा क्लीशे सा शब्द है ना कि भाई गाड़ी के दोनों पहिए हैं,
0: बिल्कुल,
1: आप उनके बिना नहीं चल सकते। और अब पुरुषों को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की बहुत जरूरत है कि अब स्त्री को नए परिपेक्ष में देखें, वो एक नए ढंग से देखें उसके सम्मान को, उसके काम के सम्मान को। मुझे जो स्वतंत्रता है ना, वो शब्द स्वच्छंदता नहीं बनना चाहिए
0: जी।
1: स्त्री का या पुरुष की स्वतंत्रता जो है वो अभी थोड़ा सा, मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि स्त्री अभी जो स्वतंत्रता के नाम पे उच्छृंखलता जो हो रही है ना, वो स्त्री को और गुलाम कर रही है।
0: जी जी, बिल्कुल सही कहा। और स्वच्छंदता शब्द तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों पर ये सही नहीं बैठता है,
1: दोनों के लिए गलत है। तो स्वतंत्रता के नाम पे आप कहें कि मैं ये खा लूं और मैं वो पी लूं, नशा कर लूं, उसमें स्वतंत्रता है, तो हम तो और गुलाम हो रहे हैं। ये स्वतंत्रता नहीं। स्त्री की स्वतंत्रता आर्थिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए
0: जी,
1: है ना। ये दो स्वतंत्रता, वो अपना प्रोफेशन खुद चुने, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, और अपना कोई भी चीज चुनने के लिए वो फ्री हो,
0: फ्री
1: ये होना
0: वहां
1: चाहिए।
0: उसे स्वतंत्रता
1: जी
0: चाहिए
1: जी,
0: अपने निर्णयों को लेना सीखेगी, जिंदगी को किस ओर ले जाना है सही तरीके से। तो आपने इतनी फिल्में देखी हैं, आप फिल्मों की मुरीद हैं, सिनेमा लिखती हैं, सिनेमा को डायरेक्ट करती हैं। आज जो वर्तमान सिनेमा की हम बात करें, महिलाओं को जिस रूप में दर्शाए

0: रहा है, आप उसे कहां तक सहमत हैं? जो स्थिति फिल्मों में स्त्री की दिखाई जा रही है, स्त्री खुद क्या इसकी जिम्मेदार है या वहां कहीं ना कहीं मजबूरी या प्रोफेशन आ रही है?
1: देखिए, समाज में मुझे क्या लगता है कि जब से शराब स्टेटस सिंबल बन गई है तब से हास होने लगा है
0: जी।
1: अब हर फिल्म में आप दिखा रहे हैं कि स्त्री मद्यपान कर रही है या ये कर रही है वो कर रही है, तो ये कौन सी चीज बोलना चाह रहे हैं आपके, मतलब ये सामान्य होनी चाहिए ये चीज? इसके तो मैं खिलाफ हूं। आप मुझे शायद पुराने समय का, पुराने विचारों का आप वो कर दें, लेकिन कोई भी चीज, औषधि भी अगर आपको मानसिक रूप से गुलाम बना रही है तो भी गलत है, है ना? तो किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की ये चीजें, उसको ग्लोरीफाई करके, उसको बहुत ज्यादा आप हाईलाइट करके और अपनी हीरोइनों से आप, क्योंकि आम आदमी, एक किस्सा सुनाती हूं मैं। हम लोग दिल्ली गए थे शादी के बाद, मैं और पुरी साहब, तो पुरी साहब तो आर्ट फिल्में और इस तरह की फिल्में थी, हम लोगों के पास कोई इतना पैसा तो था नहीं। तो मेरे एक वहां पर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एड पूरी साहब से बनवा देते तो तुम लोगों का आना जाना फ्री हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। एड में बहुत पैसा मिलता है, जो पूरी एक फिल्म में जो एक साल तक बनती है उतना एक दिन की शूटिंग में एड में मिल जाता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात है, ये तो पूरी साहब करेंगे। पूरी साहब बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। उनका काय का एड है? बोले सिगरेट का। तो पूरी साहब बोले, उससे पहले ही मैंने कहा नहीं, पूरी साहब सिगरेट का ऐड नहीं करेंगे। पूरी साहब ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं करूंगा, मेरे कहने से पी लेंगे क्या लोग? मैंने कहा पूरी साहब, अगर आपके कहने से नहीं पिएंगे, ये आप तर्क दे रहे हैं, तो ये आपको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कला फील्ड में हैं, आपको लोग देखते हैं और इनको भी पता है कि आप कहेंगे तो हजार लोग देखेंगे, दो लोग तो पिएंगे, है ना? अब हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो अगर इस तरह के ऐड करते हैं और कहते हैं कि हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, समाज सुधारक आप हो या ना हो, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बच्चा जो है 15 साल का से लेके 5 साल का बच्चा भी आपके उस पे डांस करता है और आपको सुनता है, आपको हीरो मानता है वो या हीरोइन मानता है, आप जो करेंगे वो उसका अनुसरण करेंगे। तो आप अगर इस तरह के ऐड करेंगे, विज्ञापन करेंगे, आपको तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो है आपने स्टेक पे लगा दिए।
0: बिल्कुल।
1: तो पूरी साहब ने नहीं किया फिर वो ऐड। तो हम उस तरह के लोग हैं जो सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम कुछ कह रहे हैं और हमारी बात 10 लोग भी सुन रहे हैं तो हमें बहुत सोच समझ के करनी और कहनी चाहिए।
0: जी, आपकी कहनी और करनी में अगर अंतर है तो फिर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती।
1: जी
0: जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार क्या कह रहा है, क्या विज्ञापन दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज में क्या फैला रहा है। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा और आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए।
1: जी, मेरी पसंद का

0: सीमा जी, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपको कौन से कलाकार पसंद हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपने बतौर एक्टर या एक गहराई के तौर पर पसंद किए, तो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप पसंद करती हैं?
1: दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बलराज सहानी, फिर उसके बाद जो बचपन में हमारे हीरो हुआ करते थे वो राजेश खन्ना
0: जी,
1: और देव साहब, धर्म जी, इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने अलग अलग तरह का सिनेमा किया। अब आप देखिए, धर्म जी बिल्कुल घोर कमर्शियल फिल्मों में थे, लेकिन उन्होंने अनुपमा की, सत्यकाम उन्होंने प्रोड्यूस की, है ना, और कितनी फिल्में हैं जो उन्होंने
0: बहुत सारी फिल्में हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जितेंद्र को जब हम देखते हैं तो गुलजार साहब
1: जंपिंग जैक के नाम से जाने जाते थे,
0: लेकिन गुलजार साहब की फिल्मों में उन्हें एक अलग रूप देखने को मिला। और अगर नायिकाओं की बात करें तो कौन सी नायिकाएं आपको?
1: नायिकाओं में मुझे वो बेचारी अपने सौंदर्य की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई कभी जिक्र नहीं करता है, जबकि वो कलाकार बहुत अच्छी थी अगर आप उनकी सिनेमा उठाएं। लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा कि वो बहुत हसीन थी।
0: मधुबाला
1: उनकी सुंदरता पर चर्चा होती है, लेकिन आप जरा मुगले आजम उठा के देखें, आप मिस्टर एंड मिसेस 55 उठा के देखें, आपको वो रेंज मिलेगी, कहां कॉमेडी कहां सीरियस। वो कलाकार बहुत अच्छी थी, तो मधुबाला मुझे बहुत पसंद थी। नरगिस बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, मीना जी बहुत अच्छी।

0: परफॉर्मर्स थे वो, उनका एक स्टाइल था। और शबाना बहुत अच्छी परफॉर्मर है अभी के उसमें, करीना अच्छी परफॉर्मर है, बस ये है कि ये लोग स्क्रिप्ट अच्छी चुन लें तो ज्यादा अच्छा हो।
1: शशि कपूर के लिए भी हम यही पढ़ते थे कि वो इतने हैंडसम थे कि उनकी एक्टिंग पर तो बात होती थी लेकिन उनकी खूबसूरती के दीवाने ज्यादा थे।
0: जी जी,
1: तो कई बार आपकी अति सुंदरता भी जो है आपके लिए, आपकी कला के लिए,
0: जैसे अभी ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत है लेकिन वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है, परफॉर्मर अच्छी है, मैंने उनकी कई ऐसी फिल्में देखी है, परफॉर्मर बहुत अच्छी है वो, लेकिन अब जिक्र ही नहीं होता है। आप उनकी सुंदरता में बात करते हैं कि उसमें खूबसूरत लगी ये करी वो सब, जबकि देखिए ना मीना जी भी कम खूबसूरत थी क्या, उनकी अपनी अलग तरह की खूबसूरती थी, नरगिस जी की अपनी खूबसूरती थी,
1: बहुत सुंदर
0: जी,
1: आंखें बोलती थी उनकी
0: जी,
1: उनके होंठ बोलते थे जिस तरह से उनका,
0: परफॉर्मर मुमताज भी अच्छी थी। कुछ कलाकार डायरेक्टर के एक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स जो हैं कुछ फिल्मों में बहुत खराब काम करते हैं और कुछ फिल्मों में ब्रिलियंट होते हैं, वो निर्देशक के कलाकार होते हैं। निर्देशक अगर आप देखिए ना, आप शक्ति सामंत की फिल्म कर रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कर रहे हैं, फिर आप किसी और की फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ जाता है।
1: जी बिल्कुल, कि आपको निर्देशक ने किस रूप में पर्दे पर उतारा,
0: निर्देशक है? कितना स्ट्रांग है अपने काम में।
1: बतौर निर्देशक अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कौन सा ऐसा कलाकार पसंद है जिसने आपके निर्देशन में बहुत ही अच्छा काम किया आपकी नजर में?
0: मेरे निर्देशन में तो मेरे परिवार के ही दो लोग तो काम कर ही रहे, अन्नू भाई और रंजीत भाई ने भी मेरी सीरियल में काम किया था एक्टिंग, जबकि वो एक्टर नहीं है। तो पुरी साहब आसान थे उनके साथ काम करना, अनुभव के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि कई बार वो बड़े भाई भी बन जाते थे। बाकी तो मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे सुरेश ओबेरॉय हो चाहे दिव्या हो, सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला।
1: दिव्या भी एक बहुत अच्छी कलाकार,
0: बहुत अच्छी,
1: बहुत ही संचिता कलाकार है
0: जी, और मेहनती बहुत है, अपने काम पे फोकस है उसका और मेहनत करती है, चीजों को बार बार पूछना सवालों को कि ये कैसे है, ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, क्योंकि हर को गांव का नहीं मालूम होता ना, गांव के क्या है वो आप निर्देशक या राइटर से पूछते हैं
1: जी,
0: गांव में तो नहीं रहे हुए होते, तो वो उस तरह से ना उन लोगों का अपना जो होमवर्क है वो करने में पूरा टाइम बार बार फोन करके पूछना कि ये कर लूं क्या, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर गांव का होता है तो उनके जो मैनरिज्म है ना, उनके हाव भाव, जैसे गांव का कोई कंधे उचका के ना नहीं कहेगा, ये बहुत ही शहरी जेस्चर है, तो वो ख्याल रखना वो निर्देशक का भी जरूरी है, कलाकार अगर उसमें गच्चा खा जाए थोड़ा कमजोर हो जाए तो निर्देशक का वो बनता है, लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो होमवर्क जिसे बोलते हैं ना, कि फिर गांव का जो कैरेक्टर है वो कैसे उसके हाव भाव होंगे, कैसे हाथ उठा के बात करेगा, कैसे क्या करेगा, ये लोग होमवर्क बहुत करते हैं, इसलिए ये इतने
1: स्टैब्लिश कलाकार हैं, अच्छे और परिपक्व कलाकार हैं, जहां किसी भी फिल्म में इन कलाकारों ने कभी आपको बोर नहीं किया, जैसे हम एक सामान्य शब्दों में कहें
0: जी,
1: जिसे कहते हैं कि निरुत्साह नहीं किया, हमें कभी निराशा नहीं हुई इन्हें देखकर कि ये क्या एक्टिंग कर,
0: कमजोर नहीं पड़े ये अपने अपने किरदार में,
1: क्योंकि अपने काम को इतना मजबूती के साथ इन्होंने किया है। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और फिर एक सवाल आपसे पूछते हैं।
0: मदन मोहन जी का संगीत में एक गाना मुझे बहुत पसंद था, दुल्हन एक रात की, मैं लता जी ने गाया, सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो मैं सो जाऊं,
1: बहुत सुंदर गाना है, चलिए तो सुनते हैं यही गीत
0: जी।

0: बहुत सुंदर गीत सीमा जी आपने हमें सुनवाया और इससे पता चलता है कि क्लासिक जो है संगीत आपको पसंद है और जो रूह को सुकून दे रहा है। आपकी 2025 में एक आत्मकथा आई किताब के रूप में, उसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ उस किताब के बारे में, उस आत्मकथा के बारे में।
1: हाँ।
0: बहुत ही सुंदर उसका शीर्षक है,
1: यूं गुजरी है अब तलक। जी, तो किताब का ख्याल मुझे ऐसे आया था कई साल पहले। क्या हुआ था कि पुरी साहब से बिछड़ने के बाद आई लॉस्ट माई चाइल्ड।
0: जी,
1: तो उसमें मेरे भाई, मेरी माता जी, वो सब इतने दुखी थे कि मेरे दुखी होने का मुझे समय नहीं मिला, ना अवसर मिल रहा था, क्योंकि सबको रोता देख के अगर मैं भी रो रही होती तो उनको संभालता कौन।
0: जी,
1: तो इसलिए मैंने एक फसाड, एक ना एक आवरण सा ओढ़ रखा था कि कोई बात नहीं, ये जीवन है, ये भी समय निकल जाएगा और ऐसे करके। लेकिन मेरे अंदर ना एक दावानल चलता रहता था, आपको एक कोना चाहिए जहां आप रो सकें, जहां आप कथार्सिस जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक रेचन हो जाए, अंदर से जो गुबार है वो निकल जाए। तो मुझे, मैं सबके बीच में घिरी हुई थी, सारे मेरे दुख से दुखी थे, उनको मैं अपना दुख दिखा के दुखी नहीं होना चाहती थी। तो मैंने कहा कि कलम ही एक ऐसा मेरा साथी है जो मैं अकेले में जिसको लिख सकती हूं और अपने उद्गार पेपर पे ना उसकी स्याही जो है मेरे आंसुओं की तरह उसे निकालूं।
0: जी,
1: तो मैंने अपने बच्चे को एक खत लिखा जो चला गया कि भाई तुम, मेरी कोख इतनी खराब थी कि तुम नहीं रह सके उसमें। तो फिर उससे मैंने कई सवाल पूछे कि तुम क्यों नहीं आना चाहे, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए सारा कुछ वो करके रखा था कि दुनिया में ऐसे तुम्हें वो करूंगी, ऐसे तुम्हारी तरबियत पालन पोषण करूंगी, कैसे भी अभाव होंगे, कैसे भी कुछ होगा, संघर्ष करूंगी, लेकिन तुम्हें मैं सारे वो सपने जो तुम देखोगे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो वो सब

0: मैंने खत लिखा उसको, फिर भी सवाल जब वो नहीं हुए तो मैंने बच्चे की तरफ से माँ को एक खत लिखा कि मैं क्यों नहीं आया
1: जी।
0: तो ये जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आत्मा को बड़ी मेरे कथार्सिस हो गया, एक दर्द जो है निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना जो जिंदगी में झंझावात झेले हैं, जिंदगी में जो अनुभव अच्छे बुरे खट्टे मीठे थिएटर कंपनी के बाबूजी की, जो लोगों ने जाना नहीं है, लोग ये जानते पारसी थिएटर हुआ करता था, नाटक मंडलियां हुआ करती थी, लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, उनकी स्त्रियां क्या थी, वहां पे स्त्रियों की क्या दशा थी, जो स्टेज पे समाज से उपेक्षित थी, स्टेज पे कमाती थी लेकिन फिर भी वो पुरुष के सत्ता के अधीन थी वो
1: जी।
0: तो वो सब मैंने उतारने के लिए मन बनाया और ऐसे मैंने कहा ये सिर्फ सारी चीजें कहानियों में नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी सारी कहानियां कहां लिखूंगी मैं, अपनी आत्मकथा ही लिख दूं, उसमें तो सारे वो कैरेक्टर हैं, वही बिब्बी हैं, वही बुग्गी हैं और वही चंदा हैं और वही शरीफ भाई हैं और वो जो नाटक कंपनी के चरित्र हैं सारे हैं, वो उनको उतारा जो थे हमारी नाटक कंपनी में, क्या मेरी माँ थी उनका संघर्ष, क्या मेरे फादर थे उनका संघर्ष, हमारा संघर्ष के इतने अमीर माता पिता की संतान होके आज देखिए जब हमारा थिएटर कंपनी जो हमें इतना पैसा और खाना देती थी, उसके बाद जब सिनेमा आया तो थिएटर कंपनियां बंद हो गई, भुखमरी आ गई
1: जी,
0: है ना, सारी थिएटर कंपनियां बंद हो गई। एक जमाने में जिस फिल्मों ने सिनेमा ने हमारी रोजी रोटी छीनी, आज वो सिनेमा हमें रोजी रोटी दे रहा है। तो ये पूरा जो ग्राफ है जिंदगी का, ये मैंने उसमें लिया और लोगों को शैली भी बहुत पसंद आई, कहने का स्टाइल पसंद आया।
1: काफी चर्चित रही ये किताब और 2025 की सबसे चर्चित किताबों में से एक किताब रही ये युगश्री अब तलक, और उसमें मुझे लगता है कि हम
0: साहित्य तक ने तो उसको 2025 की टॉप 10 में बुक में
1: शामिल किया, और काफी लोगों ने आपको उस वक्त जाना पहचाना, आपके दर्द को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो सीमा जी आगे भी आप यूं लिखती रहे, ये शुभकामनाएं हम आपको देते ही है। चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।

0: आगे की नए प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या हैं, बस ये जानना चाहते हैं।
1: जी वो फिल्म बना रही हूँ, दो सीरियल का है वो कर रही हूँ, एक दो महिलाओं पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं। जी एक जगह है जहाँ पर गांव से महिलाएं जो हैं वो नदी के पार करके जाती है, कुछ भी नमक भी खरीदना हो तो उनको नदी पार करनी पड़ती है, और नदी कैसे पार करनी पड़ती है, टायर ट्यूब होते हैं ना उसमें बैठ के और अपनी चप्पलों को चप्पू बना के वो नदी पार करती है।
0: अरे
1: तो वो मैं बना रही हूँ, अभी पानी थोड़ा सा नदी में कम है तो इस वजह से थोड़ा अब मैं सर्दियों में जाके, तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ कि मैं जितना भी काम करूँ, मेरी जो महिलाएं हैं, मैं चूंकि स्त्री हूँ तो मैं स्त्रियों पे ही काम करना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इस लाइन में आने वाली स्त्रियों को आप क्या कहना चाहती हैं, युवा स्त्रियों को जो इस लाइन में आना चाहती हैं बतौर राइटर, बतौर निर्देशक, बतौर एक्टर?
1: देखिए कोई भी विधा, जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक कोई पत्रकार हैं वो एक्टिंग में चले गए तो लोग उनको डिफेंड करने लगे कि भाई लोग सीखते सीखते सीखेंगे। मैं इसके खिलाफ हूँ। एक तो जो कलाकार आता है, जो जैसे अभी एनएसडी से ट्रेंड एक एक्टर आ रहा है
0: जी,
1: ठीक है, आपने उसकी रोजी रोटी छीन रहे पहली बात, जिसने इसी को पढ़ा है जो यही कर रहा है, और फिर जब करोड़ों रुपए एक फिल्म में लगते हैं तो वहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई रोटी बनाना है कि धीरे धीरे सीखेंगे।
0: हाँ,
1: नहीं
0: तो सीखने की प्रक्रिया भी चल रही है।
1: हाँ, ये प्रक्रिया नहीं है, करोड़ों रुपए आप पे लगते हैं तो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि देखिए दो तरह से आप सिनेमा की तरफ आकर्षित होते, ग्लैमर और पैसा। तो जब ये दो चीजों से आकर्षित होकर आप आते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस जो हैं आपको 5% होंगे। लेकिन आप कलाकार हैं, आप पढ़ते हैं, आपने सिनेमा पढ़ा होता है, थिएटर पढ़ा होता है, आपने लिटरेचर पढ़ा होता है, म्यूजिक पढ़ा होता है, ये सारी चीजें जब आपने की होती है, थिएटर किया होता है और टेक्निक जानते हैं, मतलब ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर बिना एमबीबीएस किए डॉक्टर, हम उससे इलाज नहीं करवाएंगे, एक इंजीनियर से बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे जब तक कि वो नहीं है, इसी तरह कलाकार को, कला क्षेत्र को आप ऐसे मत सोचिए कि कोई भी आके कर ले, उसके लिए आपको ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप कुछ बनेंगे।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी आपने एक संदेश युवा आने वाली लड़कियों को खासतौर से दिया है, जो केवल शारीरिक सौंदर्य के बल पर आना चाहती हैं और दूसरी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि किसी भी लाइन में जाने

0: से पहले आपको वहां के लिए पढ़ना और गुनना बहुत जरूरी है खुद को। तो बॉम्बे टॉकीज में आज सीमा जी आपने विविध भारती के लिए अपना अमूल्य वक्त निकाला है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: नहीं, विविध भारती तो जिंदगी में जब हम बच्चे थे तब से जुड़ा हुआ है हमसे, और जहां से जाएंगे तो विविध भारती सुनते हुए ही जाएंगे, कोई ना कोई गाना चलता ही रहेगा।
0: जी, तो चलिए एक और गाना जान लेते हैं इस कार्यक्रम का।
1: जी, एक गाना मजरू साहब का है, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, एलपी का म्यूजिक है। न जा अब कहीं न जा,
0: दिल के सिवा।
1: दिल के सिवा
0: क्या बात है।

0: बॉम्बे टॉकीज में आज दोस्तों हमारे साथ थी जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर। और अब बॉम्बे टॉकीज में आज इतना ही। मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, नमस्कार।
1: ये था जानी मानी लेखिका, निर्देशिका और निर्माता सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर।

आकाशवाणी जयपुर वर्तमान समय अपराह्न 5:00। स्वागत करुछु आपणमानंकु आजिकार सांध्य अधिवेशनकु। कार्यक्रम आम केन्द्रर प्रचारित हेउछि मीडियम वेभ्रे 204.5 मीटर तथा 1467 किलोहर्ट जोगे एवं एफएम्रे 103.6 मेगाहर्ट जोगे। आपण प्रसार भारतीर न्यूज अन एआईआर आप साहाय्यरे मध्य आम केन्द्रर समस्त कार्यक्रम शुणिपारिबे। अधिवेशन प्रारंभरे भेटि देउछु जुव श्रोतांक मनपसंदर कार्यक्रम जुववाणी।

0: गीतसुनलु एउटा जात्रा फरा मात्र लागला नि कि
1: नारी जात्रा फरा जात्रा गीत नसुल्लान न मुनि मान न लागे हो
0: तुइ ओठ काम कर
1: ओइ
0: जात्रा त देखलस कति इले गोर खाता वार्ता गोर सुनै देस
1: सुनै देबी काई यानले छि
2: अले दिदी त म न कइटा म न प्रमिता पुत्र तमर घर कोनती कोरापुट तमर काम कइटा काई पाइती कोलास नि तमे मु गर्भवती मा शिशु मन को टीका देबारे सहाय्य करे केंद्र त गर्भवती हले कार्ड दिया जाय टीका दे सब रोग दूरे रखा जाए पाला मा मान को चाकरी कर दीदी 14 वर्ष दीदी कह दिया से टीटी इंजेक्शन काम खाएटा टीटी इंजेक्शन काम होगा टीटी रिटी बंद हो गला टीटानस
1: उन्नीस
2: टकर डिथेरिया टीटानस डिथेरिया मान हूँ कंथवाड़ी टीटानस धनुष टकर दात ए दिटा रोग न होगा बोलिकिना टीडी इंजेक्शन गर्भवती माँ को दिया होची 10 वर्ष और 16 वर्ष पिला मान को भी दिया होची
1: गर्भवती महिला के कंठ आलती ना काटे कईटा कहीं
2: कंठ आलती आलती रोग आपन सुनी कंठ रोग प्रकार संक्रमण जोड़ा कि माने रेडनेस लाल पड़ जीव घास हम फुली खाइबा कि ढुकी पार्वनि मृत्यु रुखीन भी हमें से कंठ रोग न होगा दिया जाए
1: गर्भवती महिला के दिया कि
2: गर्भवती महिला मान को दिया हम ता सहित 10 वर्ष झील मान को 16 वर्ष ही दि जाए
1: लक्षण केमती दीदी के चिन्ह पड़ा कंडाली है बोल कर
2: तंटी बथा हब बेची किसी ढुकी पार्वनि मानते पाटी आ कर देखा लाल हो जाए पका पका हो जाए मेडिसीन गुडाक सब सिम्पटम्स गुडाक चिन्ह गुडाक भी देखा जाऊनी सब मान बंद हो गला चिन्ह लक्षण भी ना सब इराडिकेट हो गला मान ना ये रोग आम इंडिया तो कम से कम देखा जाऊनी
1: बोले ये इंजेक्शन दे रोग
2: कारण ये रोग थे मान तार मृत्यु हेबार चांसेस बहुत अधिक सब किलर डिजीज गुडाक सब रोग बोल कि
1: दिया इंजेक्शन मान अच्छे दीदी
2: पिला मान को दिया हूँ दिया हूँ गर्भवती माँ मान जो गर्भवती अच्छा से दिटा दिया गर्भवती गोटे जाणीदेला जे सी मु गर्भवती अच्छी बोलिकिना से सांगे सांगे भैक्सीन दे पार तार जो आज देसी मैंने तार मस गोटे दब
1: गोटे मस भार अच्छे
2: नौ मस भाई दिटा भैक्सीन नब जन्म बीसीजी टीका नब हेपाटाइटिस जंडिस पोलियो दिया हम देस चारिटा भैक्सीन पार्टी में दुई प्रकार रोटा भैक्सीन प्रसाद गोटे अच्छी जो 16 इयर पर्यंत चलो
1: पिले गोटे पिला जन्म ताके 16 वर्ष पर्यंत से इंजेक्शन सुजा मानते सुजा जदि मारी न पार्लु कि दे न पार्लु कई असुविधा कि
2: पिला पाई पूरा संपूर्ण भाव से रोग रु मुक्त हो पारे संपूर्ण करा पड़ो जे कौन सी जिनस भी
1: आपका पिला क्या टोकी के से इंजेक्शन दबा
2: यदि से गर्भवती माँ जदि से कार्ड करबनी भैक्सीन नबनी मानते छुआ दी जन

0: आले गीत मन सुन देलो सौ लख सार
1: आज बोट लख म खा जात्रा पर लागला नि म
0: जात्रा पर लागसी लागसी काय बे बोल से मोई से मोरी हानी नाही
1: ओ ओ ओ
0: मोरी आन ले सरी तक प कर तो खान ल बदाई देर ले तेरे अधिक कोन सार दे
1: ओ ओ सत्ता का
0: न त रे फुट गान लिया ती जड़क ने
1: पुटका खाय करबी त मई
0: पुटका खेल बुस रे
1: ए मई पिला ठकी जे मते खोइलुस नि आ म खे काजा लडू खेनी देस मामा
0: नाही खादा लडू ना छाना गेनी कर खाइबार छ जात्रा ताने तो गाला बल छाना गेन
1: दे
0: नाही सस्ता का तर नाही रे बावडी छाना न खायले पण जत्रा दे करी माखडी जनावर बारे हे पण गेले जुबे बेगी
1: बोले आले आले जु खाय जुआ लागो बाई पण मन
0: आज जुआर लागो

0: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछा स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा किया और बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कांग को परात 41 डिग्री चया मगावर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिलेगा। बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार आनंद एल रॉय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। और खेलों में पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी संवाद रिलेकुल आकाशवाणी दिल्ली रु आकाशवाणी जयपुर आसंतु सुनिबा हमरो संध्या अधिवेशन रो विभिन्न कार्यक्रम संपर्क करे। श्रीमद भागवत शुणी संध्या 6:20।

नमस्कार श्रोता बंधु, आपण मानको आजिर बनानी कार्यक्रम को सबुज स्वागत। श्रोता बंधु, मनीष सबुबले निजर मौलिकता को जाहिर करने को चाहिथाए, समाज रे भल ना करने को चेष्टा करिथाए, भलरे आउ सुस्थरे रहिबाकु मध्य सबुबले प्रयास करिथाए। आउ एई भलरे रहिबार मानसिकता सेतेबेले पूरण हब जेतेबेले आमे माने स्वच्छ आउ विशुद्ध परिवेश रे बास करि पारिबा। स्वच्छ परिवेश कहिले आमे एतिकी बुझु जे बार मास छ ऋतु जेमिति आम पाई समांतराल अनुभव हेउ, अर्थात ठीक समय रे वर्षा हबा, ऋतुकालीन अनियमितता देखा न देबा, जलवायु रे विभ्रट सृष्टि न हेबा, आम चारिपाखरे गछलता गुड़िकर अभाव जणा न पड़िबा, उद्भिद आउ प्राणी जगत मध्यरे उचित समन्वय रक्षा हेबा, एमती अनेक सुस्थ परिवेश देखा देले आमे स्वच्छ परिवेश रे रहुचे बोली हृदयंगम करिबा। आजिकाली गछर अभाव देखा देउछि, जहाद्वारा माटी पानी पवन परी आम जीवनदायक पदार्थ प्रदूषित हेबारे लागिछि, आम जीवन शैली प्रभावित हेउछि, चाष कार्य तथा आम प्रगति क्षेत्र रे बाधा उपजुछि। तेणु एते अनियमितता को आमे काहेकि बरदास्त करिबा, आमे जेहेतु शिक्षित आउ जानिबार, तेबे चालंतु ना स्वच्छ सुंदर परिवेशर परिकल्पना करी गछ लगेबा पई अंटा भिड़िबा। परिवेश हित पई राज्य वन विभाग जो पदक्षेप हाथ को नेउची ताकु फलप्रद करिबा पई आगे आसिबा। ता छड़ा सरकारंकर विभिन्न योजना विषय रे जानी एथिरु लाभ पाइबा पई निजर भूमिका को सब्यस्त करिबा। एमती सचेतन मनोभाव नै कार्य कले आम परिवेश निश्चय सबुज बनानी रे पूरी उठिब, आउ आमे माने एक विशुद्ध परिवेश रे बसवास करी प्रकृतिर अवदान को उपभोग करि पारिबा।

0: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସନ୍ତୁର ବାଦନ ପରିବେଷଣ କଲେ ପଣ୍ଡିତ ଶିବ କୁମାର ଶର୍ମା। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ସମାଚାର ସନ୍ଧ୍ୟା, ପରେ News@9 ଏବଂ ଶେଷରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडम्बर मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
3: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और

0: रचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को

0: सुनाई दी है।
1: टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री,
2: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
1: इट्स ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमेरिका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसैलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले दो दिन में डिसैलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसैलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंता बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में एक व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व

0: के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. 72nd National Film Awards announced. Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370, Mammootty for Brahmayugam and Kartik Aaryan for Chandu Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain to be India's flag and baton wearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. And in FIFA World Cup, France to clash with England for third place at Miami Stadium tonight. Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards today in New Delhi this evening, Chairman of Jury Feature Film Jairaj said Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahmayugam and Chandu Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370.
2: Best actress in leading role, Article 370, Hindi film. Renowned performance that portrays a law enforcement agent's unwavering pursuit of truth and justice with sensitivity, courage and compassion. A performance that leaves a profound and lasting impact. Actress Yamini Gautam. Best actress.

0: आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में
1: के के डोले की में लो।
0: स्मृति शेष में नमन फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं। जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी, जाने माने फिल्मकार अभिनेता गायक और संगीतकार के भाग्यराज, और जाने माने फिल्म निर्देशक निर्माता लेखक और अभिनेता भारती राजा।

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले

के एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानूभाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य भूमि

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थी राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

0: दुनिया के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थीं। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
1: प्यादे तो ठीक है
2: जी,
1: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा।
2: सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, नींबू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
3: बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साइज सगन बिचार दे।
4: क्या खड़ा हो गया यार?
5: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुई। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक

0: गाया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया, तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थी। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक, दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थी विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उधर वे भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजयी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पिस्टन जी, राव साहब और हमीदा बाई की कोठी वगैरह। उधर वे रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद नहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती रानी की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पिस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
1: तूने जरू की सूरत देखी है, उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष के अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने। बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, नहीं तू सुख नहीं बात करे। उस औरत ने तेरे को इतना सेल्फिश बना दिया है, पन खुदाए सब देखता है, याद रख दे।
0: इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जानी मानी फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर
2: से दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जानी मानी फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज नेहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल

0: हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982। हथकड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की। 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें,
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: पहलाज नेहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
2: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
0: पहलाज नेहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहां भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

कामयाब फिल्में हैं चिन्नावीडू और इधू नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथीन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।

पसंदीदा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथने मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

के भाग्यराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रही। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की

नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा, आउटडोर में न अच्छी लाइटिंग होती है न आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बेताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो।

0: सन 1980 में भारतीय राजा ने अपनी फिल्म से गप्पू रोजाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौट।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा। सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र

यह था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के

0: বাদল কুমার আচার্য, সন্তোষী প্রসাদ মিশ্র, গীতামঞ্জরী বেহরা এবং অসীমা পণ্ডা।
1: এতেবেলে পর্যন্ত শুণুলে গীতিনাট্য বালিরথে বিজে শ্রীজগন্নাথ রিলে কলু আকাশবাণী কটক কেন্দ্রর।
2: আপন জনে ব্যবসায়ী কি আউ আপনক ব্যবসায়কু বড়াইবাকু চাহুচন্তি কি
3: তেবে চিন্তা করন্তু নাহি, এনিকি আকাশবাণী জয়পুর আপনক ব্যবসায়কু বড়াইবার দায়িত্ব নব।
2: রেডিওরে বিজ্ঞাপন দিয়ন্তু আউ আপনকর ব্যবসায়কু বড়ান্তু।
3: সুলভ দররে আপনকর ব্যবসায়র বিজ্ঞাপন পৌঁছি যাব সবুঠি সবু সময়রে আউ সমস্তক পাখরে।
2: বিজ্ঞাপন পাই যোগাযোগ করন্তু 8280306927 কিংবা 9449408097 নম্বর রে।
3: আকাশবাণী জয়পুর সদা আপনক সাথে।
1: আকাশবাণী জয়পুর আমার পরবর্তী কার্যক্রম রিলে করুছু আকাশবাণী দিল্লিরু শুনি পারবে কিছু সময় মধ্যরে।
4: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে শক্তি সিংহ। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
5: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं ताकि उसकी फंडिंग चलती है। सेम सिचुएशन वैली में।
4: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना रामोल गातात्र रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
6: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी बसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना

और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अडप्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।